0: विज्ञापनों की बुकिंग,
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग हेतु संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

श्रोताओं, आज ही आंध्र प्रदेश के एक साधारण परिवार में जन्मे पार्श्व गायक एसपी बालसुब्रमण्यम का जन्मदिन, जिन्हें लोग प्यार से बालू कहते थे। उनके पिता हरिकथा और संगीत से जुड़े थे, इसलिए घर में सुरों का माहौल शुरू से ही था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एसपी बालसुब्रमण्यम ने शास्त्रीय संगीत की लंबी औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, फिर भी उनकी आवाज में ऐसा जादू था कि सुनने वाला सीधे भावनाओं से जुड़ जाता था।

श्रोताओं, पार्श्व गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम युवावस्था में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। एक संगीत प्रतियोगिता में उनकी प्रतिभा पर संगीतकारों की नज़र पड़ी। यही वो मोड़ था जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। 1966 में उन्होंने फिल्मों में गाना शुरू किया और फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

धीरे धीरे एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ दक्षिण भारतीय सिनेमा की पहचान बन गई। इसके बाद उनका सफ़र किसी नदी की तरह बहता चला गया। उन्होंने इलैयाराजा जैसे महान संगीतकार के साथ काम किया। उनकी आवाज़ कभी प्रेमी नायक की मासूमियत बन जाती, कभी दर्द की पुकार तो कभी उत्सव की खुशी।

0: इतना करो ना मुझे प्यार, इतना करो ना मुझे प्यार।
1: फिर आया बॉलीवुड का दौर। फिल्म एक दूजे के लिए से हिंदी दर्शकों ने एस पी बाल सुब्रमण्यम को पहचाना, लेकिन असली जादू तब हुआ जब उन्होंने सलमान खान के लिए गाना शुरू किया। फिल्म मैंने प्यार किया के गीत दिल दीवाना ने पूरे देश को दीवाना बना दिया। आइए सुने यही सा गाना एस पी बाल सुब्रमण्यम की आवाज़ में।

0: श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का, अभी हाजिर होते हैं।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: हेलो डॉक्टर, आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम। हेलो डॉक्टर, सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ। हेलो डॉक्टर,
5: जलवायु और भूमि पर जीवन, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन के कारण भूमि की क्वालिटी गिर रही है, पौधे और जानवर लुप्त हो रहे हैं और रेगिस्तान बढ़ रहे हैं। जंगल, आर्द्र भूमि और घास के मैदान जैसे महत्वपूर्ण स्थान जो इंसान और प्रकृति दोनों की मदद करते हैं, आज काफी दबाव में हैं। वनों की कटाई और अत्यधिक चराई जैसे अस्थिर तरीके इन खतरों को और बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर हम जमीन का सही और टिकाऊ उपयोग करें, पेड़ पौधे दोबारा लगाएं और पर्यावरण को सुधारें, तो इससे प्रदूषण कम होगा और जीव जंतुओं की रक्षा भी होगी। यह कदम एक सुरक्षित और मजबूत जलवायु वाले भविष्य के लिए जरूरी है। क्या आप जानते हैं, आज दुनिया की 1/4 से ज्यादा जानवरों और पौधों की प्रजातियां लुप्त होने के किनारे पर हैं।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पार्श्व गायक SP बालसुब्रमण्यम के गाए गीतों को। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी बहुभाषी प्रतिभा। उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम समेत करीब 16 भाषाओं में हजारों गीत गाए। कहा जाता है कि उन्होंने 40,000 से अधिक गीत रिकॉर्ड किए, जो अपने आप में एक अद्भुत उपलब्धि है।

श्रोताओं, पार्श्व गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम को लोग उनकी विनम्रता के लिए याद करते हैं। इतने बड़े कलाकार होने के बावजूद वे नए गायकों को प्रोत्साहित करते थे, संगीत को पूजा की तरह मानते थे और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। 2020 में जब उनका निधन हुआ तो पूरे

देश में शोक की लहर दौड़ गई, मगर उनकी आवाज़ आज भी फिल्मों, स्टेज शो और रेडियो और उनके अपने लोगों के बीच, यादों के बीच जीवित है, जैसे कोई पुराना दोस्त वर्षों बाद भी दिल के करीब रहता है। वैसे एस पी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ भारतीय फिल्म संगीत की आत्मा का हिस्सा बन चुकी है।

0: श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे थे पार्श्व गायक एस पी बाल सुब्रमण्यम के गाए गीतों को। जिन फिल्मों के गाने आपने सुने, फिल्में थी सागर, वंश, लव, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और एक दूजे के लिए। इन गीतों के लिए आवाजें थी एस पी बाल सुब्रमण्यम, लता मंगेशकर और चित्रा की। गीतकार थे जावेद अख्तर, समीर, मजरू सुल्तानपुरी, देव कोहली और आनंद बख्शी। संगीत से सजाया था राहुल देव बर्मन, आनंद मिलिंद, राम लक्ष्मण और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, समय अभाव के कारण हम ये गाना आपको पूरा नहीं सुनवा पाए, इसका हमें खेद है। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। फिल्म संगीत का आनंद आप एक बार फिर से ले सकते हैं 2:30 पर। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आप सुनेंगे 2:00 मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार बुलेटिन। तो अभी आइए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण में शामिल होते हैं। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Energy, security, trade and investment topped the agenda of Prime Minister Narendra Modi's talks with Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. Northeastern Council's meeting underway in Shillong. Union Home Minister Amit Shah chairs deliberations on tourism, agriculture, economic corridor development, infrastructure and connectivity. Veteran film producer Pehlaj Nihalani passes away. Republicans and Democrats jointly seek to end President Donald Trump's military action in Iran. U.S. House of Representatives passes resolution. Southwest monsoon sets in over Kerala. And first World Yoga and Sports Championship to begin in Ahmedabad this

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में

वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों

0: क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद NEC का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। ये अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, इनमें से 382

0: 64 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
1: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
2: आईसीयू 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है। शॉर्ट सर्किट से कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है। बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जाँच कर रहे हैं।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रूपये और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जायेगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
3: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
1: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
4: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 30,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार बुलेटिन आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम की 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 2:30 हुए हैं। फिल्म संगीत का कार्यक्रम हमारे श्रोता सुनेंगे थोड़ी देर में।

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, आज हिंदी फिल्मों के जाने माने निर्माता और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने इल्जाम, आंखें, शोला और शबनम, पाप की दुनिया जैसे सफल फिल्म

फिल्मों का निर्माण किया और अभिनेता गोविंदा के करियर की शुरुआत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाल के महीनों में वे लीवर संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे। उनके निधन से भारतीय फिल्म जगत में शोक की लहर है। लीजिए सुनिए पहलाज निहलानी के निर्माण में बनी पाप की दुनिया फिल्म का ये गाना।

0: आप सुन रहे थे पाप की दुनिया फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में। गीत रचना थी अनजान के और संगीत से सजाया था बप्पी लाहिड़ी ने। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में वक्त है छोटे से अंतराल का, अभी हाजिर होते हैं।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
0: अंतराल के बाद फिल्म संगीत कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत।

आप सुन रहे थे सरस्वती चंद्र फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। गीतकार थे इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी, आनंद जी। कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा ये गाना। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म का नाम है

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

कार्यक्रम के आखिर में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हम दोनों फिल्म का ये गाना। गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने और संगीतबद्ध किया था सचिन देव बर्मन ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ।

श्रोताओं, हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं FM की 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। हमारी इसी सभा में दिन के 3:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाजों में गजल। लोकगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे अंगिका लोकगीत, कलाकार होंगे विजय भारती झा। समय होगा दिन के 3:45। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से दिन के 2:55 हुआ चाहते हैं। आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, तो अभी आइए आकाशवाणी के रांची केंद्र के प्रसारण में शामिल होते हैं। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। रांची के नगड़ी मौजा में प्रस्तावित रिम्स 2 की जमीन पर प्रशासन की मौजूदगी में बाउंड्री का काम शुरू हो गया है। निर्माण कार्य की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने इसका कड़ा विरोध किया। मौके पर पहुंचे कांके अंचल अधिकारी अमित भगत और पुलिस बल ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि यह उनकी उपजाऊ खेती योग्य जमीन है, जिससे उनकी आजीविका जुड़ी है। केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल पर जामताड़ा में विशेष उत्साह है। भाजपा जिला महामंत्री अभय कुमार सिंह ने इसे विकास का स्वर्णिम युग बताया है।
1: हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की 12 साल लगातार सेवा पूर्ण हुई, जिसमें उज्ज्वला योजना के तहत गैस दिया, जिससे समय का भी बचत हुआ। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बैंक से लोन लेकर समूह के माध्यम से व्यवसाय शुरू किया तथा सशक्तिकरण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को सम्मान मिला।
0: वहीं ग्रामीण महिला सुलेखा मोहली ने कहा कि उज्ज्वला योजना और बैंक ऋण से महिलाएं सशक्त हुई हैं। अंतिम व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचने से देश की वैश्विक पहचान मजबूत हुई है। हजारीबाग के चुरचू प्रखंड की हिंदेगढ़ा पंचायत में महिला किसानों के लिए जलवायु स्मार्ट और जैविक कृषि पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य कम लागत में टिकाऊ खेती के जरिए उत्पादन और आय बढ़ाना है। केंद्रीय वर्षा आधारित ऊपरी भूमि धान अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर शिव मंगल प्रसाद और डॉक्टर सोमेश्वर भगत ने महिलाओं को मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने तथा रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने की विस्तृत जानकारी दी। चतरा के इको पार्क में आज विश्व पर्यावरण दिवस के सप्ताह व्यापी कार्यक्रम के तहत भव्य पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। 3 श्रेणियों में हुई इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया।

0: बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर विषयों पर अपनी रचनात्मकता के माध्यम से प्रकृति बचाने का संदेश दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पलामू में पुलिस विभाग की आपातकालीन प्रणाली मजबूत करने के लिए डायल 112 के तहत 36 आधुनिक बाइक शामिल की गई है। डीआईजी किशोर कौशल और एसपी कपिल चौधरी ने इन जीपीएस और सायरन से लैस गश्ती वाहनों को हरी झंडी दिखाई। अधिकारियों के अनुसार इससे पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ेगी और त्वरित रिस्पॉन्स सुनिश्चित होगा।
1: ये झारखंड सरकार के द्वारा सभी जिलों को चार पहिया वाहन और पहिया वाहन उपलब्ध कराए गए, जिससे कि सघन रूप से वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। उसी चरण में पहले चार पहिया वाहन उपलब्ध कराए गए, दो पहिया वाहन भी उपलब्ध कराए गए, जिसे पलामू पुलिस के द्वारा और उस प्रणाली के जीपीएस उसमें लगाया गया।
0: पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में आज आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में चित्रपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल 2026 के आयोजन की घोषणा की गई। यह 3 दिवसीय फिल्म महोत्सव आगामी 26 से 28 जून तक रांची स्थित सरला बिरला विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा। आयोजन समिति के सचिव पुलन मित्रा और नवीन सहाय ने बताया कि इस फेस्टिवल की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें केवल झारखंड के फिल्मकारों द्वारा निर्मित फिल्मों का ही प्रदर्शन किया जाएगा। और अब मौसम का हाल। राज्य में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने रांची सहित राज्य के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, जिससे तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। अहमदाबाद में आयोजित 15वीं मॉडर्न पेंटाथलॉन नेशनल चैंपियनशिप 2026 में झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी यानी JSSPS के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। बाइथल इवेंट में आरती कच्छप ने रजत और आतासी कुमार ने कांस्य पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया है। दोनों खिलाड़ी होटवार के JSSPS स्विमिंग सेंटर की हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के ठीक 3 बजे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतिन बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: है काम आदमी का दूसरे के काम आना।
1: क्या बात है काम आदमी का दूसरे के काम आना। धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार को भेजने के लिए। अब आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी का।
2: और अगला संदेश मिला है महाराष्ट्र से प्रथमेश हेड़के जी का। उन्होंने लिखा है, मुझे NCERT का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद है, हर दिन, हर बार, हर रोज सुनता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: इलाहाबाद से रेशमा नाज डोम और बेबी अंसारी डोम।
1: आप सबको हमारा आभार संदेश भेजने के लिए। श्रोताओ संदेश जरूर भेजिए क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। साथियों इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थलों की। कल हमारी चर्चा का विषय था गोभी का शीत मरुस्थल।
2: इन कड़ियों में हमने विशेष रूप से ये जाना था कि मरुस्थल या मरुभूम कहलाने के लिए किसी क्षेत्र में रेत ही रेत हो या बहुत गर्मी हो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
1: जी हाँ श्रोताओ, मरुभूमि या मरुस्थल की परिभाषा उस क्षेत्र की निर्जलता या अति अल्प वृष्टि पर निर्भर करती है। तो विमलेश जी, आज हम किस शीत मरुस्थल की चर्चा करने जा रहे हैं? मेरे विचार से क्यों ना भारत के शीत मरुस्थलों की चर्चा की जाए।
2: अजीत जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सोच रही थी कि आज हम भारत के शीत मरुस्थल की चर्चा करते हैं जो लद्दाख में है। आपको याद है NCERT की ओर से मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम भी वहां जा चुके हैं।
1: जी हाँ, हमने उस इलाके को देखा भी है।
2: जी बिल्कुल, मुझे भी याद है। तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे लद्दाख के शीत मरुस्थल की। इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। जैसा कि हमने सुना था, मरुस्थल का अर्थ सिर्फ रेत नहीं होता बल्कि वो जगह मरुस्थल कहलाती है जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। तो श्रोताओ आपको बता दें कि लद्दाख में सालाना वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50 से 100 मिलीमीटर के लगभग।
1: लेकिन विमलेश जी ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है कि वहाँ यानी लद्दाख में इतनी कम वर्षा क्यों होती है?
2: अजीत जी, इसका कारण ये है कि लद्दाख का क्षेत्र हिमालय पर्वत की रेन शेडो यानी वर्षा छाया में स्थित है। हिमालय पर्वत यहाँ आने वाली वर्षा को रोकता है। अजीत जी, मुझे तो ये भी याद है कि वहाँ जाने पर हमें शुरू में सांस लेने में भी थोड़ी कठिनाई हुई थी।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहाँ की हवा अधिक ऊंचाई के कारण बहुत पतली होती है और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है। इसलिए पहली बार जाने वालों को कुछ विशेष सलाह दी जाती है। बताइए क्या सलाह दी जाती है?
2: जी, वहाँ पहली बार जाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि तेज न चलें, ज्यादा ऊंची चढ़ाई न चढ़ें और भारी शारीरिक काम जैसे ट्रैकिंग वगैरह एकदम से उत्साह में आकर न करें।
1: जी,
2: पहले वहाँ के वातावरण में अपने शरीर को अनुकूलित करें और फिर धीरे धीरे सामान्य गति में आए।
1: जी बिल्कुल सही। श्रोताओ, यहाँ का तापमान सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे जा सकता है।
2: जी,
1: लेकिन गर्मियों के दिनों में धूप तेज लगती है।
2: जी,
1: लद्दाख का अर्थ ही है ऊंचे दर्रों वाली भूमि। श्रोताओ एक बात और आपको बता दें कि ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल मार्गों में गिना जाता है।
2: अब बात करते हैं यहाँ पाए जाने वाले जीवों की। खास तौर से यहाँ याक, स्नो लेपर्ड, हिमालयी भेड़िया और नीली भेड़ पाई जाती है। और हाँ, लद्दाख की झीलें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे पेंगोंग झील। श्रोताओ, और अब जानते हैं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: तो विमलेश जी, यहाँ के मुख्य भोजन हैं स्कू और थुकपा।
2: जी,
1: ये गेहूं के आटे से बना होता है। पावा भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है जो जौ के सत्तू से बनाया जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई खुबानी से बनती है। यहाँ लोग अपने घर मोटी मिट्टी और पत्थरों से बनाते हैं ताकि घरों में गर्मी बनी रहे। जहाँ तक खेती की बात है, यहाँ विशेष रूप से जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं।
2: अजीत जी, एक और रोचक बात श्रोताओं से साझा करना चाहती हूँ।
1: हाँ जरूर कीजिए।
2: वो ये कि लद्दाख में एक पेड़ बहुत अधिक पाया जाता है जिसे विलो कहा जाता है।
1: जी,
2: इनकी लकड़ी हल्की, मजबूत और लचीली होती है। इसी लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं।
1: दुनिया
2: भर में इस लकड़ी की बहुत मांग है, इसलिए लद्दाख में इसकी खेती भी की जाती है।
1: जी, ये तो आपने बड़ी रोचक जानकारी हमें दी। विमलेश जी, आपको याद है जब हम वहाँ गए थे मैग्नेटिक हिल?
2: बिल्कुल याद है।
1: जहाँ यदि वाहनों को बंद भी कर दिया जाए या न्यूट्रल गियर में भी रखा जाए तो वो खिसकने लगते हैं।
2: बिल्कुल।
1: क्या रहस्य है इसका, जरा श्रोताओं को बताइए।
2: जी जी, ये जगह लेह कारगिल मार्ग पर स्थित है। हमने भी तो इसका अनुभव किया था। लोग अक्सर सोचते हैं कि वहाँ पहाड़ियों में कोई चुंबकीय शक्ति है जो वाहनों को खींचती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार वास्तव में वाहन वहाँ अपने आप नहीं चलते। ये एक दृष्टि भ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन है।
1: जी श्रोताओ, दरअसल बात यह है कि वहाँ की सड़क की बनावट ही ऐसी है कि जो सड़क हल्की ढलान पर नीचे जा रही होती है वो आंखों को ऊपर ऊपर जाती दिखाई पड़ती
2: जी।
1: है। इसी दृष्टि भ्रम से ऐसा लगता है कि वाहन अपने आप सड़क रहे हैं। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुरुद्वारा पत्थर साहिब है जो एक दर्शनीय स्थान है।
2: श्रोताओ, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ बौद्ध संस्कृति, मठ, प्रार्थना चक्र और रंग बिरंगे खूबसूरत झंडे देखे जा सकते हैं। और तो और, सिंधु घाटी की सभ्यता को पालने वाली सिंधु नदी लद्दाख से ही गुजरती है। श्रोताओ, इस नदी को देखना भी हमारे लिए कभी न भूलने वाला अनुभव था।
1: जी, सुंदर नीला आकाश, रात में असंख्य चमकते हुए तारे
2: जी,
1: रेत, बर्फ, सूखे पहाड़,

0: शीले और वहाँ की आध्यात्मिक संस्कृति, जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें क्या लगता है विमलेश जी?
1: कि भारत के शीत मरुस्थल लद्दाख में हमें एक साथ मिलते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के प्रसिद्ध शीत मरुस्थल लद्दाख की।
1: जी,
0: आशा है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है,
1: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और आप हमारे ईमेल पर भी अपने संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर यानी ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो इन्हें आप NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल या दीक्षा पर सुन सकते हैं। दीक्षा पोर्टल पर आप पढ़ पाएंगे ढेर सारी शैक्षिक सामग्री और सुन व देख पाएंगे हमारे ऑडियो वीडियो कार्यक्रम भी।
1: जी, और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
0: भारत अर्थात इंडिया।
1: कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से भारत देश के विभिन्न नामों के बारे में बताया गया है और उन नामों के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी सप्रसंग विवरण किया गया है।
2: भारत अर्थात इंडिया।
3: दोस्तों, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम, जहां हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच। अनुष्का भीड़ की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचने लगी,
4: हमारे देश के इतने सारे नाम, कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, तो कोई हिंदुस्तान भी कहता है।
3: दोस्तों, अनुष्का का कौतूहल स्वाभाविक था। क्या आपने भी कभी इस प्रकार से सोचा? अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोचा तो चलिए आज इस मनोरंजक और रोचक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। अनुष्का अपने स्कूल गई, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं गई थी। उसने ये बात अपनी सहेली जिशा से साझा की। तय ये हुआ कि वो अपने हिस्ट्री के अध्यापक से बात करेंगे। वो बात ध्यान से सुनते हैं और बोलने का मौका भी देते हैं।
5: सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं?
6: कौन? ओ, अनुष्का, जिशा, तुम दोनों आ जाओ, अंदर आ जाओ। शाबाश।
7: क्या अभी आपके पास समय होगा?
6: तुम लोग बिल्कुल ठीक समय पर आए हो।
5: सर, उस दिन हम क्रिकेट मैच देखने गए थे।
6: हाँ, वो बांग्लादेश और भारत का।
7: जी वही।
5: सर, उस दिन लोग वहाँ कुछ बातें कर रहे थे।
6: अच्छा।
7: सर, कोई कहता था कि इंडिया जीतेगा, तो कोई कहता कि भारत ने मैच जीता।
6: और
5: कोई कहता था कि हिंदुस्तान की टीम ने कमाल कर दिया। और
6: हाँ, बोलो।
7: सर, हमारी पुस्तक में देश का नाम भारतवर्ष भी तो है।
6: बिल्कुल।
5: लेकिन सर, दूसरे देशों के इतने सारे नाम तो नहीं होते। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के नाम तो एक ही है। फिर हमारे देश के इतने ढेर सारे नाम क्यों हैं?
6: बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन ये आज से 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था।
7: 5000 वर्ष पहले?
6: हाँ, इसके लिए हमें हजारों वर्ष पहले के इतिहास में जाना होगा।
5: जी, लेकिन हमें हजारों वर्ष पहले की जानकारी कैसे मिलेगी?
6: अच्छा ये बताओ, तुमने ऋग्वेद का नाम सुना है?
7: जी सर, सुना तो है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है।
6: प्राचीन ही नहीं, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
7: अच्छा।
6: इस ग्रंथ से हमें अपने देश के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं।
7: जैसे?
6: जैसे इस ग्रंथ के अनुसार हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में एक वैदिक समूह निवास करता था।
7: वैदिक समूह?
6: हाँ, वैदिक समूह। इस समूह के ऋषियों और मुनियों द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। इस वैदिक समूह का नाम भरत था।
7: भरत?
5: भरत नाम तो हमने सुना है।
6: अच्छा, भाई भरत नाम से बाद में बहुत से राजाओं को भी जाना गया।
7: ओ, भरत। अच्छा तो ये बात है।
6: हाँ।
7: तो क्या इसी भरत नाम से देश का नाम भारत पड़ा?
6: बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुष्का, इसी नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जिसे बाद में भारत वर्ष भी कहा जाने लगा। ये वैदिक समूह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी सिंधु घाटी क्षेत्र में निवास करता था। ऋग्वेद में इस भाग को सप्त सैंधव अर्थात सात नदियों की भूमि कहा गया है।
7: अच्छा।
6: हाँ, सैंधव शब्द सिंधु शब्द से आया है।
5: मैंने पढ़ा था कि सिंधु का मतलब होता है नदी।
6: बिल्कुल सही, इसका तात्पर्य सिंधु नदी से ही है। अच्छा ये तो बात हुई ऋग्वेद की। अब सिंधु के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात।
7: वो क्या सर?
6: वो ये कि छठी शताब्दी पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैनिक अभियान किया और सिंधु नदी के इलाके पर नियंत्रण कर लिया। अपने लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत के सिंधु इलाके को हिद, हिदु या हिंदू कहा है।
5: फारसियों ने सिंधु को हिद, हिदु या हिंदू कहा है,
7: भला ऐसा क्यों?
6: ऐसा इसलिए क्योंकि फारसी भाषा में सिंधु शब्द का रूपांतरण हिंदू होता है।
7: अच्छा।
6: हाँ, क्योंकि स अक्षर उनकी भाषा में है ही नहीं।
7: है ही नहीं?
6: हाँ।
7: ऐसा कैसे?
6: ऐसा है, स की जगह उन्होंने ह का प्रयोग किया।
7: ओ।
6: हाँ, हिंदू। तो सिंधु रूपांतरित होकर बन गया
7: हिंदू।
6: शाबाश। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदू शब्द से उनका तात्पर्य हिंदू धर्म से नहीं था।
7: तो फिर?
6: हिंदू शब्द एक भौगोलिक शब्द था जो सिंधु नदी या सिंधु की घाटी क्षेत्र को संदर्भित करता था।
7: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। सर, ऋग्वेद के अलावा क्या कुछ और भी ग्रंथ है जिनसे हमें और अधिक जानकारी मिल सकती है?
6: बिल्कुल जिशा, कुछ और हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे विष्णु पुराण और महाभारत। अच्छा जरा ये बताओ, मैंने अब तक कितने ग्रंथों के नाम तुम्हें बताए?
5: आपने अब तक तीन ग्रंथों के नाम बताए।
6: अच्छा, कौन कौन से हैं वो तीन ग्रंथ?
7: सर, ऋग्वेद, महाभारत, विष्णु पुराण।
6: अरे वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छे। विष्णु पुराण में बच्चों हम पढ़ते हैं वो देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं।
7: अच्छा।
6: हाँ।
5: सर, आपने प्राचीन ग्रंथ महाभारत का भी नाम लिया था।
6: बिल्कुल।
5: क्या उससे भी हमारे देश की जानकारी मिलती है?
6: देखो, पहली बात तो ये है कि महाभारत ग्रंथ के नाम में ही भारत का नाम है।
7: अच्छा।
6: हाँ, महाभारत में पहली बार भारत को भारत वर्ष भी कहा गया है।
7: अच्छा।
6: हाँ, और साथ साथ इस ग्रंथ में एक और नाम है भारत का।
7: वो क्या?
6: बताता हूँ बच्चों, वो है जम्बूद्वीप।
5: जम्बूद्वीप?
6: हाँ, जम्बूद्वीप। महाभारत में भारत वर्ष को जम्बूद्वीप भी कहा गया है।
7: जम्बूद्वीप?
6: हाँ?
7: ये नाम भला क्यों?
6: देखो, जम्बू का अर्थ होता है जामुन। इसे जम्बुल भी कहते हैं। जामुन का पेड़ उन दिनों इस भूभाग पर बहुत अधिक पाया जाता था, इसलिए भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया।
7: अच्छा।
6: हाँ, सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों में संपूर्ण भारत का वर्णन जम्बूद्वीप के नाम से भी किया है।
7: सर, मैंने सुना है कि उन दिनों हमारा देश बहुत बड़ा था।
6: बिल्कुल ठीक तुमने सुना है, उन दिनों भारत में आज के बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी सम्मिलित थे।
7: इतने सारे देश?
6: हाँ, और शायद इसी

0: हाँ, तो अभी अभी मैंने बताया था कि भारत में फारसी लोग आए, लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानियों का भी हमारे देश में आगमन हुआ।
1: अच्छा।
0: हाँ, यूनानी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया।
1: ओ।
0: और सिंधु नदी को इंडोई या इंडिके कहा।
1: ऐसा क्यों कहा उन्होंने?
0: उनके साथ भी भाषा की समस्या थी।
1: ओ,
0: हाँ।
1: तो इसका मतलब है कि यूनानियों के लिए सिंधु कहना मुश्किल था और इंडो या इंडिके कहना ज्यादा आसान था।
0: हाँ। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा, तुम्हें एक बात और बता दूं, और वो ये कि प्राचीन यूनानी लोग भारत में रहने वालों को इंडोई कहते थे।
1: अच्छा, इंडोई यानी इंडिया के रहने वाले इंडोई कहे जाते थे।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह से नाम पड़ा इंडिया।
0: हाँ?
1: और हिंदुस्तान?
0: देखो, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तुर्क और मुगलों ने किया। वो जिन इलाकों से आए थे उन इलाकों के नाम के आगे प्रायः स्थान शब्द हुआ करता था, जैसे
1: अफगानिस्तान।
0: बिल्कुल सही।
1: बलूचिस्तान।
0: सही।
1: तुर्किस्तान।
0: बिल्कुल। और उज़्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। और बच्चों, शायद स्थान का अर्थ स्थान से रहा हो।
1: सर, अब हमें हमारे सवालों का हल मिल गया।
0: अच्छा?
1: हाँ, बिल्कुल।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: सर, आपने हमें बड़ी मजेदार जानकारी दी। हमारे देश के इतने सारे नाम हैं, लेकिन हमें किस नाम का प्रयोग करना चाहिए?
0: बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो, हमारे संविधान की अंग्रेजी प्रति के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहा गया है, इंडिया जो कि भारत है।
1: अच्छा।
0: हाँ। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें संविधान की प्रस्तावना याद है?
1: जी, प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
0: बहुत अच्छे। तो हमारे देश का नाम हुआ भारत, जिसे इंडिया भी कहते हैं। समझ में आया?
1: जी सर।
0: शाबाश। अच्छा, आज जो भी तुमने जाना है, समझा है, उस जानकारी को तुम कल क्लास में सबके साथ बांटोगे।
1: सब्जी साथ?
0: हाँ, सबके साथ।
2: तो साथियों, कैसी लगी आपको अपने प्यारे देश भारत अर्थात इंडिया के विषय में ये जानकारी? अच्छी लगी ना? इतने सारे नाम शायद ही किसी और देश के रहे होंगे। आज हमने जाना कि हमारे देश का नाम है भारत अर्थात इंडिया।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत अर्थात इंडिया, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पहली उड़ान।
4: इस कार्यक्रम में विश्व इतिहास में मनुष्य की पहली उड़ान के बारे में रोचक जानकारी दी गई है, और बताया गया है कि कैसे गर्म गैस के गुब्बारे पर मनुष्य ने पहली बार उड़ान भरी। इस घटना ने भविष्य में आधुनिक वायुयानों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया।
5: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है, और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
6: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
7: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
8: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
7: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
8: हाँ पूछो।

0: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
1: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
2: लेकिन माँ,
1: ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा, जोसेफ
0: जी,
1: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
0: अच्छा माँ, ये लो माँ।
1: ला,
2: ओ, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
0: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल गया मुझे।
1: क्या मिल गया
0: मुझे? माँ माँ ओ माँ,
1: क्या मिल गया? क्या मिल गया?
0: मुझे मिल गया।
2: क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया?
1: सब क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही, क्या हो गया है?
0: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
2: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
0: स्टीफन, स्टीफन, माँ माँ माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो। हाँ इस कमरे के धुएं को देखो, इसमें इसमें क्या उड़ रहा है बताओ, बताओ उसमें क्या उड़ रहा है?
1: कुछ भी तो नहीं,
2: कुछ भी तो नहीं है।
0: ओ नहीं स्टीफन नहीं, ध्यान से देखो। हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है? उड़ रही है ना?
2: वो तो है मगर
0: इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
2: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो,
0: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें हैं?
2: हाँ।
0: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
2: हाँ, ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ, चलो देखते हैं।
0: ठीक है, आओ मेरे साथ।
1: अरे सुनो, अरे खाना तो खाते जाओ। स्टीफन, जोसेफ, सुनो तो।
3: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई, उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
4: अरे गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
5: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
4: हाँ भाई भीड़ तो है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
5: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
4: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
5: हाँ, आओ, आओ, यही ठीक रहेगा। आओ चलो।
4: अरे भाई साहब जरा रास्ता दीजिए, आगे जाने दीजिए।
6: भाई साहब आ जाइए।
5: आ गए, आ गए। यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते।
4: अरे अरे वो देखो वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
5: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। वो देखो टोकरे में। हाँ
4: अरे अरे, अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
5: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
4: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे, अरे वो देखो, स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है।
5: और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
4: अरे अरे अरे, वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर जा रहा है। ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
5: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
4: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया।

0: दूसरा चला गया।
1: अरे चौपर, अरे दो नजर को देख कमांड निकाली, आज तक ऐसा नहीं हुआ।
0: वो देखो, वो देखो, हमारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा, उधर उधर जा रहा है, देखो पेड़ों की तरफ।
1: अरे
0: देखो,
1: अरे हाँ हाँ, अरे वो पेड़ों की तरफ, अरे बाप रे, अरे वो पेड़ से जाकर टकरा गया, अरे गिर गया, अरे गिर गया।
2: हाँ साथियों, ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं, ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बतख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया, जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ऑलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
3: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहली उड़ान, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार, नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। दिन के 3:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में श्रोताओं लीजिए सुनिए भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाजों में चंद गजलें।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 2.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हमारी इसी सभा में शाम 4:02 पर आप सुनेंगे वीर सैनिकों को संबोधित हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। दिन के 3:45 हुआ चाहते हैं। लोकगीत का कार्यक्रम हमारे श्रोता सुनेंगे बस थोड़ी देर में।

लोकगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को अपने रेडियो दोस्त सुरेंद्र टूडू का नमस्कार। श्रोता मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अंगिका लोकगीत और कलाकार हैं विजय भारती झा। तो आइए सुनते हैं इनकी पहली प्रस्तुति।

0: श्रोता मित्रों, अभी आप सुन रहे थे अंगिका लोकगीत विजय भारती झा की आवाज में। तो इसी के साथ ही हमारा ये लोकगीतों का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। मुझे यानी कि सुरेंद्र टूडू को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 4 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आप सुनेंगे समाचार मुख्यांश, और समाचार मुख्यांश के बाद शाम 4:02 पर आप सुनेंगे वीर सैनिकों को संबोधित हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, जिसका प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। अभी आइए आकाशवाणी के रांची केंद्र के प्रसारण में शामिल होते हैं और सुनते हैं समाचार मुख्यांश। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। पलामू जिले के राजहरा रेलवे स्टेशन पर आज कोयले से लदी एक मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के कारण अपलाइन पर रेल परिचालन पूरी तरह ठप हो गया है और कई ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर रुकी हुई है। डाल्टनगंज स्टेशन प्रबंधक उमेश कुमार ने घटना की पुष्टि की है। सरायकेला खरसावा में भाजपा के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। जिला अध्यक्ष हरेकृष्णा प्रधान ने बताया कि इस अभियान का शुभारंभ एक पौधा माँ के नाम कार्यक्रम के तहत प्रत्येक शक्ति केंद्र पर वृक्षारोपण कर किया जाएगा। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने आज अपनी मांगों को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग कार्यालय का घेराव किया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में जाति जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण और प्रमोशन में घेराव आरक्षण लागू करने के लिए मांग की गई। मोर्चा के अनुसार इस घेराव का मुख्य उद्देश्य ओबीसी समाज के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना था। सिमडेगा के ठेठई टांगर में पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर करीब 8.5 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। मामले में 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि तीसरा आरोपी फरार है। एसडीपीओ धर्मदेव पासवान ने बताया कि तस्कर ओडिशा से गांजा लाकर यहां पुड़िया बनाकर बेचते थे। जामतारा प्रखंड कार्यालय में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और सुविधा केंद्रों को लेकर जागरूकता शिविर लगाया गया है। प्राधिकार के सचिव पवन कुमार ने बताया कि जून महीने में पूरे जिले के प्रखंडों और वृद्धा आश्रमों में विशेष शिविर चलाकर बुजुर्गों को कानूनी अधिकारों की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। शाम के 4:02 हुए हैं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे वीर सैनिकों को संबोधित हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। तो आइए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण में शामिल होते हैं।

0: ना, ये उनके डीएनए में है। लेकिन आज सिर्फ साफ सफाई से या पेड़ पौधे लगाने से नहीं होगा, हमें एक पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनानी पड़ेगी और हमें मिशन ग्रीन के तहत हमारा डीकार्बनाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अपक्षित मुक्त सैन्य भारत अभियान, जैसे कि जीरो वेस्ट इकोसिस्टम्स को हम बोलते हैं, वो चलाया जा रहा है और ताकि हम आने वाली पीढ़ी को इसको सुरक्षित कर सके।
1: सर, क्या जीरो वेस्ट मॉडल एक्चुअल में मुमकिन है? क्या इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से हमें बता सकते हैं प्लीज?
0: जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है और इसके लिए बस हमें थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत होती है। जीरो वेस्ट मॉडल के लिए कुछ मापदंड होते हैं, जैसे कि कोई भी वेस्ट हमारा लैंडफिल में ना जाए, वेस्ट को सोर्स पे ही 100% हम सेग्रीगेट करें, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको 100% हम इन हाउस कंपोस्ट कर सकें, कोई भी वेस्ट हम ओपन बर्निंग में ना करें या इंसिनरेशन ना करा जाए इत्यादि। जैसे मैंने बताया कि अगर ये अपनाना है तो हमें सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, वेस्ट को वेस्ट ना समझे बल्कि उसको हम रिसोर्स समझे। जिस दिन हमने वेस्ट को रिसोर्स समझ लिया, हम उसको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि रिसोर्स को हम रखते हैं और वेस्ट को हम फेंकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी सामान आप देखेंगे कि उसको हमने रिसोर्स की तरह समझ के रखा है, तो या तो वो खुद ही हम यूज कर सकते हैं या कोई और, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो रिसाइकिल होके कहीं ना कहीं किसी के इस्तेमाल में आ ही जाएगा।
1: सर, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स कैंप किस प्रकार से जीरो वेस्ट में तब्दील किया गया, क्या इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आप हमें समझा सकते हैं प्लीज?
0: जी बिल्कुल। आज जैसा आप जानते हैं, पहले जितना भी वेस्ट होता था ये इकट्ठा होकर म्यूनिसिपैलिटी लैंडफिल्स में जाया जाता था, जो फिर कूड़े का पहाड़ बन गया। सो इसके लिए हमने जीरो वेस्ट के लिए सिस्टम तैयार किया। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार वेस्ट को सोर्स पे ही चार तरीके से हम सेग्रीगेट करते हैं, जैसे ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, स्पेशल केयर वेस्ट और सैनिटरी वेस्ट। इसके अलावा हमने कोलैबोरेट किया है कई एनजीओ से या संस्थाओं से, जो कि रिसाइकल हमें इन साइंटिफिक तरीके से इसको कर सके। इसके अलावा कई उपकरण भी लगाए गए हैं। तो सब करने से इसका नतीजा ये हो रहा है कि जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो अब 100% हम इन हाउस यानी कि कैंप में ही कंपोस्ट कर रहे हैं या फिर उसको हम बायोगैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपका किचन का वेस्ट हो गया या हॉर्टिकल्चर वेस्ट। जो ड्राई वेस्ट है जैसे पेपर वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, उनको हम इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद इन संस्थाओं को देते हैं जो वहां पे इनको रिसाइकिल करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स में तब्दील करते हैं, और इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का करते हैं। इसके अलावा अवेयरनेस के लिए हमने कुछ रैक्स लगाए गए जिसको हम वॉल ऑफ काइंडनेस कहते हैं, ताकि जो सामान काम का है लेकिन शायद मेरे काम का नहीं है, उसको रीयूज करने के लिए लोग अपना वहां पे उसको डोनेट करते हैं, जैसे किताब, बुक्स, शूज, बच्चों के खिलौने, बर्तन, वो डोनेट करते हैं और जिसको जरूरत है वो उसको वहां से ले लेता है। सो इन सब छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जो हमने चीजें शुरू करी है यहाँ पे, इससे पिछले कुछ ही महीने में सिर्फ कैंप ने करीब 50 टन से भी ज्यादा वेस्ट को रिसाइकिल कर दिया गया है और लैंडफिल जाने से बचाया गया है, और इसी तरीके से बाकी कई यूनिट और हमारे स्टेशन अब जीरो वेस्ट में इस तरीके से तब्दील हो रहे हैं।
1: कहना होगा कि इनिशिएटिव्स वाकई कमाल के हैं और आई होप कि आर्मी से इंस्पिरेशन लेके बाकी लोग भी इनिशिएटिव्स करें। सर, क्या ये अभियान कैंप को साफ रखने और कचरे को लैंडफिल में जाने से रोकने के लिए है या इसको और आगे बढ़ाने के लिए, आपने क्या सोचा है या क्या कदम उठाए हैं?
0: देखिए, साफ सफाई रखना और लैंडफिल्स में कचरा ना जाने के लिए ये एक छोटा सा पार्ट है ओवरऑल जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, तो क्योंकि इसमें और भी कई चीज शामिल हो जाती है, जैसे कि हमारे नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना। आपको पता है नेचुरल रिसोर्स एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, चाहे हम पानी की बात करें चाहे हम फ्यूल की बात करें, तो उनको कंजर्व करना। इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन करना, वृक्ष लगाना, ये भी सारा हमारे पूरे पर्यावरण की तरफ आता है और इन सब चीजों पर भी हम काफी काम कर रहे हैं। अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन पे आऊं, सबसे पहले फ्यूल कंजर्वेशन, तो उसमें ईवाइजेशन यानी कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैंप में ही आज की डेट में 25 से ज्यादा व्हीकल हमारे इलेक्ट्रिक हो रखे हैं, जिसमें हमारे सैनिक यहाँ पे ऑफिस और में जा रहे हैं।

श्रोताओं, अपरिहार्य कारणों से हम वीर सैनिकों को संबोधित हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, जिसका प्रसारण होता है दिल्ली केंद्र से, नहीं सुनवा पा रहे हैं, इसका हमें खेद है।

0: देश की मिट्टी को देश के सैनिकों का सलाम है दिल से। इस गीत के बाद अब हम आज के हमारे संदेश टू सोल्जर के स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स आर्मी कैंप के प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे से।
1: हम मौजूद हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स एमओडी आर्मी कैंप के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जोन में और हमारे साथ फिलहाल हैं प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे। सर, स्वागत है शो में। हमें इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बताइए कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं।
2: धन्यवाद, मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। तो मैं बहुत ही गर्व के साथ आपको कहना चाहूंगा, ये हमारे पूरे भारतीय सेना का पहला जीरो वेस्ट कैंप है। भारतीय सेना की हर एक यूनिट, हर एक इकाई जहाँ भी मौजूद है वो इसी तरीके से इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रही है। जब गवर्नमेंट के गाइडलाइंस मिले थे तो उसके अनुसार हम यहाँ पे वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट, इसको हम यहाँ पे सेग्रीगेट करते हैं। मतलब मुद्दा यह है कि वेस्ट को उसके सोर्स पे ही 100% रिसाइकल किया जाए। साथ ही साथ में जब ऑर्गेनिक वेस्ट या वेट वेस्ट की हम बात करते हैं तो इसमें हम एरोबिक्स लगाए हैं, जिसको एरोबिक से हम खाद बनाते हैं और साथ में बायोगैस लगाया गया है। बायोगैस कंपोस्टिंग सिस्टम से हम इसको कुकिंग हाउस में इस्तेमाल करते हैं। ड्राई वेस्ट में प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, ई वेस्ट और टेक्सटाइल वेस्ट लगाया गया है, तो इसके द्वारा भी हम इसको रिसाइकल्स को आगे देते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, वेस्ट इज नॉट अ वेस्ट, इट इंडिफिनिट रिसोर्सेस। इसको मैं एग्जांपल के तरीके से आपको समझाना चाहूंगा। समझ लो, मैंने किसी भी दुकान से आज चिप्स का पैकेट खरीद लिया, चिप्स मैंने खा लिया, रैपर फेंक दिया, तो रैपर मेरे लिए तो वेस्ट है। साथ ही साथ में मैंने केला खरीद लिया, केला खा लिया और उसका छिलका फेंक दिया, दोनों चीजें मेरे लिए वेस्ट है। अगर मेरे जैसे किसी समझदार इंसान ने उसको दोनों को इकट्ठा करके फेंक दिया, वो प्लास्टिक कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा, वो धरती की हानि पहुंचाएगा। वो केला भी मैंने कहीं और फेंक दिया, कोई उस पे फिसलेगा, गिरेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई समझदार इंसान है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, प्लास्टिक को मेरे प्लास्टिक वेस्ट में डाल दिया और उसको रिसाइकल कर दिया और उसको ब्यूटीफुल इक्विपमेंट्स में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वही केले के छिलकों को हमने खाद के एरोबिक्स में डाल दिया और उससे हमने खाद बनाई जो नेचर को आगे प्रोटेक्ट करती है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, वेस्ट इज द ओनली वेस्ट इफ यू वेस्ट इट।
1: थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए।
2: धन्यवाद।
0: हमने सुना कैसे पूरी डिटेल में मेजर अजीत मोरे ने ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ के बारे में बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके जानते हैं पूरे मिशन के बारे में। तो सबसे पहले बात एरोबिन कंपोस्टिंग की, जिसके बारे में बता रहे हैं हवलदार राजकुमार।
1: तो बात चल रही थी आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की। हम यहाँ फिलहाल मौजूद हैं एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के पास और हमारे साथ मौजूद हैं हवलदार राजकुमार जी। सर, हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में प्लीज बताइए।
3: मैं आपको ऑर्गेनिक यानी के वेट वेस्ट के बारे में बताऊंगा। किचन और हॉर्टिकल्चर को मैनेज वेस्ट करने के लिए हमने कुक हाउस में एरोबिन सिस्टम और बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल किया है। एरोबिन के अंदर हम वेजिटेबल बेस्ड, फ्रूट बेस्ड, सूखी पत्तियां और बिना पका हुआ किचन वेस्ट को डालते हैं, जो कि 20 से 30 दिन में रिसाइकल होकर खाद बन जाती है। इस खाद को हम एरोबिन से निकालते हैं, जो कि 2 से 3 दिन सूखने के बाद इसको हम एक अच्छी क्वालिटी में खाद दर्शा

0: कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में इतनी जानकारी दी, हमें बताया कि किस तरीके से खाद बनती है और बिना केमिकल्स को यूज किए बनती है। ये ग्रीन इनिशिएटिव है, मेड इन इंडिया इनिशिएटिव है। साथ ही साथ आप देखिए कि अगर इस तरीके के सिस्टम्स पूरे देश में इंस्टॉल किए जाएं, आर्मी से सीख ली जाए किस तरीके से हम वेट वेस्ट को, जैसा कि हमें प्रोजेक्ट ऑफिसर ने बताया था कि हम किस तरीके से वेस्ट को वेस्ट ना रखकर उसको एक एसेट में तब्दील कर सकते हैं, इसे कहते हैं वाकई वेस्ट से एक एसेट बनाना। थैंक यू सो मच।
1: अभी हमने जाना एरोबिन कंपोस्टिंग के बारे में। श्रोताओं, अब हम आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे हम कि कैसे बायोगैस प्लांट लगा करके हमारी आर्मी कैंप में किचन मेंटेन किया जा रहा है, और इस बारे में डिटेल में बता रहे हैं हमें हवलदार राजकुमार।
0: भारत में नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो दशकों और न जाने कितने वर्षों से होता आया है, लेकिन जिस तरीके से आर्मी इसे इस्तेमाल करती है और जिस तरीके से इसके नए प्रोसेसेस को सबके सामने रखा जाता है, ये वाकई अद्भुत है, अद्वितीय है। अभी फिलहाल हम आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की एक और बात करते हैं, जहां पर हम फिलहाल बायोगैस मशीन और बायोमेथनाइजेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। इसके बारे में हमें और बताएंगे हवलदार राजकुमार जी। सर प्लीज।
2: एलपीजी की खपत को कम करने के लिए हमने कुक हाउस में बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल कर रखा है। इसके अंदर हम मेस में बचा हुआ खाना जैसे कि पानी गर्म, दूध उबालना, अंडे उबालना इत्यादि कामों में इस्तेमाल करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, बायोगैस को अपनाना बल्कि आत्मनिर्भरता बनना ही नहीं बल्कि अपनी धरती को हरा भरा रखने में भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए वेस्टेज को फेंके ना, उससे ऊर्जा बनाएं।
0: तो बायोगैस इनिशिएटिव एक और ग्रीन इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से कचरा यानी वेस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस तरीके के इनिशिएटिव से आप क्या कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं या हमारा देश क्या कर सकता है, वो ये है कि हम इस तरीके के इनिशिएटिव से वेस्ट को कम करके उन सभी एसेट्स को अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सभी रिसोर्सेज की बाहरी खपत को कम करके अपने ही आसपास की चीजों को इस्तेमाल करके रिसोर्सफुल बनकर हम वो सभी एसेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। हवलदार राजकुमार जी, हमें प्लीज बताइए कि इसमें एक दिन में कितना वेट वेस्ट डाला जाता है और इससे कितनी गैस उत्पन्न होती है।
2: जी हाँ, ये प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे पास जो प्लांट लगे हुए हैं, इसमें एक दिन में 20 से 22 केजी वेस्ट डाला जाता है, जो कि 3 से 4 गैस को प्रोड्यूस करके इसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं।
0: इसको इस्तेमाल करने से कितने एलपीजी की बचत होती है, कितने सिलेंडर्स की बचत होती है, अगर आप हमें बता पाएं।
2: ये भी प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे कुक हाउस में जो प्लांट लगे हैं, इसमें हर एक प्लांट से एक महीने में 4 से 5 एलपीजी सिलेंडर की बचत होती है।
0: और सर, इसको कितनी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, इसमें क्या क्या चीजें लगती हैं, अगर आप हमें बताएं।
2: जी, सबसे इसकी खासियत यही है कि प्लांट को मेंटेनेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास प्लांट लगा हुआ है तकरीबन 6 महीने से लगा हुआ, अभी तक इसकी कोई भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ी।
0: बायोगैस प्लांट है इंडियन आर्मी का एक और ग्रीन इनिशिएटिव, जिसमें हम वेस्ट से बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। एलपीजी सिलेंडर्स, 4 से 5 सिलेंडर्स की खपत जितनी होती है, उतना हमें प्रोड्यूस यहां से इस मशीन से मिलता है।
1: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: देश पर जान न्यौछावर करने वाले हमारे जवान सरहद और देश के भीतर ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं यूज्ड कुकिंग ऑयल को कैसे फिर से इस्तेमाल में लाया जा रहा है और इस बारे में जानकारी दे रहे हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार।
1: यूज कुकिंग ऑयल के बारे में हम सब जानते हैं, इस ऑयल को अगर बार बार इस्तेमाल किया जाए तो ये सीरियस इंजरी सीरियस हार्म दे सकता है ह्यूमन बॉडी को। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है किस तरीके से यूज कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल किया जाए, घर घर से इकट्ठा किया जाए। इसके लिए हमारे साथ हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार जी। सर हमें प्लीज इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में प्लीज बताइए।
2: सर जैसे कि FSA की गाइडलाइन के अनुसार जो भी हमारा कुकिंग ऑयल है उसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे काफी सेहत के ऊपर भी असर डालता है, इसे कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसी को देखते हुए हमने इसको अलग करके जो भी हमारा कुकिंग ऑयल जो था इसको यूज्ड है उसको हम अलग करके किसी रिकॉग्नाइज्ड संस्था को देते हैं ताकि उसकी रिसाइकल करके उसका बायोडीजल या सोप बनाया जा सके। इसको कलेक्शन करने के लिए हमने अलग अलग इसके लिए ड्रम्स जो केन्स रखे हुए हैं ताकि उसको सही तरीके से उसको डिस्पोज कर सके और इसको हम आगे डिस्पोज ऑफ कर सके। सर
1: थैंक यू सर हमें यूज कुकिंग ऑयल के बारे में बताने के लिए धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
0: अभी तक हम जान रहे थे वेट वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि कैसे गीला कचरा रिसाइकल किया जा रहा है या अगर यूं कहें कि ये कचरा अपसाइकल किया जा रहा है। अब बहुत अहम और हमारी जिंदगी पर असर डालने वाला प्लास्टिक वेस्ट, इसे कैसे अपसाइकल करके फिर से यूजेबल बनाया जा सके जबकि प्लास्टिक के बारे में आम धारणा है कि ये कभी खत्म नहीं होता, इसकी जानकारी दे रहे हैं हवलदार अब्बास।
1: इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स को हम आगे ले जा रहे हैं। फिलहाल हमने वेट वेस्ट की बात की, हमने यूज कुकिंग ऑयल की बात की, अब हम बात करेंगे प्लास्टिक वेस्ट की, अब हम बात करेंगे ड्राई वेस्ट की। हमारे साथ हैं हवलदार अब्बास जी। सर हमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में प्लीज बताइए कैसे ये कचरा इकट्ठा किया जाता है, किस किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, कैसे आप इसको यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद क्या होता है प्लीज।
3: सभी को मेरा जय हिंद। प्लास्टिक आज के गंभीर विषय बन चुका है, हमारी कोशिश यही है कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। फिर भी जो प्लास्टिक जनरेट होकर हमारे पास आता है उसको सही से डिस्पोज कैसे करें, इसके लिए हमारे कैंप की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसके दौरान हमारे ब्लॉक्स लिविंग एरियाज कैंटीन एरियाज में हमने प्लास्टिक कलेक्शन पॉइंट्स को इंस्टॉल किया गया है। वहां से ये प्लास्टिक सेग्रीगेट होकर हमारे इस मेन कलेक्शन पॉइंट पे लाया जाता है। इसमें प्लास्टिक के बोतल, पैकिंग मटेरियल, दूध की पन्नियां, नमकीन पैकेट्स, यहां से ये सारा मटेरियल वेस्टेज मटेरियल मान्यता प्राप्त एजेंसीज में भेजा जाता है रिसाइकलिंग के लिए। इससे वहां पे फर्नीचर बनाया जाता है जैसे टेबल, चेयर, बेंच, कबर्ड, इसमें डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और इनका इस्तेमाल हम पब्लिक प्लेस पे किया जाता है ताकि लोगों को मोटिवेशन और अवेयरनेस मिले। जैकेट ग्लेशियर्स में डिप्लॉय हमारे सोल्जर्स द्वारा इकट्ठे किए गए हुए प्लास्टिक मटेरियल के वेस्टेज से बनाई गई है जो दर्शाती है कि आर्मी न खिलिप रागिस्तानों में बल्कि ग्लेशियर्स में पर्यावरण को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है।
1: हवलदार अब्बास जी मुझे ये भी बताइए कि रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर नॉर्मल फर्नीचर के मुकाबले कैसा होता है, अगर एक नॉर्मल फर्नीचर की बात की जाए और ये जो रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर है इसकी बात की जाए दोनों का कंपैरिजन कैसा है, कितना मजबूत है, हम सभी लिसनर्स को बताइए।
3: ये नॉर्मल फर्नीचर से बहुत ज्यादा अच्छा है, ये मजबूत है, धूप बारिश इस पे कोई असर नहीं पड़ता है और ये देखने में भी अट्रैक्टिव है और साथ में कंफर्टेबल भी है।
1: और सर क्या ये रिसाइकल प्रोडक्ट्स आम लोग भी खरीद सकते हैं इसके बारे में अगर आप बता पाए।
3: जी हाँ बिल्कुल, ये आप खरीद भी सकते हो और प्लास्टिक के बदले इसको ले भी सकते हो।
1: और सर हर आइटम पर कुछ प्लास्टिक नंबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है अगर आप हमें बता पाए।
3: जी ये जो मार्क 80 केजी का लिखा है ये दर्शाता है कि 80 केजी प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से इस बेंच को बनाया गया है। ये चीज भी दर्शाती है कि 80 केजी वेस्ट को फैलने से रोका गया है।
1: Absolutely. 80 kgs वेस्ट, आप सोचिए 80 किलो वेस्ट कितना ज्यादा होता है, उस वेस्ट को इकट्ठा करना, उसको रिसाइकल करना, उसको प्रोसेस करना और उसके बाद ये मजबूत फर्नीचर, ये मजबूत बेंच, ये सब चीजें बनाना कितनी अहम चीज है, ये कितना मजबूत इनिशिएटिव है, कितना फ्यूचर ओरिएंटेड है और कितना ज्यादा सस्टेनेबल है। सर पब्लिक वेस्ट या प्लास्टिक वेस्ट की अगर बात की जाए किस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, कितनी चीजें हैं
3: इसमें, डिफरेंट तकरीबन 28 आइटम्स बनाए जाते हैं जिसमें टेबल, कबर्ड, तो बहुत सारी चीजें बनाई जाती है।
1: हमें प्लास्टिक वेस्ट के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
3: थैंक यू सो मच सर।

0: इसी तरह कंधों से कंधे मिलाकर हम अपनी धरती को स्वच्छ और बेहतर बना सकते हैं और प्लास्टिक जैसे खतरनाक वेस्ट को भी अपसाइकल कर रहे हैं। अब बात करते हैं पेपर वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, और इस बारे में बता रहे हैं हमें नायब सूबेदार कुलदीप राज।
1: ड्राई वेस्ट में ही हमने पहले प्लास्टिक वेस्ट की बात की, अब हम बात करेंगे पेपर वेस्ट की। किस तरीके से पेपर्स को इकट्ठा किया जाता है, कैसे वेस्ट पेपर्स को यहाँ पर लाया जाता है और उसके बाद उसको श्रेड किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस के बारे में हमें बताएंगे कुलदीप राज जी। सर प्लीज हमें इस पूरे प्रोसेस के बारे में समझाएं।
2: जय हिंद। पेपर का इस्तेमाल पूरे कैंप में कम से कम किया जाता है, जिससे पेपर और समय दोनों की बचत होती है और एनवायरनमेंट में भी फायदा मिलता है, जिससे पेपर का इस्तेमाल कम होता है और पेड़ पौधे कटने से बचते हैं। जो भी पेपर वेस्ट होता है, जैसे कि शटल पेपर, गत्ता, किताबें, रजिस्टर इत्यादि, प्लास्टिक वेस्ट की तरह मान्यता प्राप्त एजेंसी को दिया जाता है और जिससे पेपर, किताबें, डायरी इत्यादि बनाए जाते हैं, जिसे इस्तेमाल में लाया जाता है। रीयूज करने से रिसोर्सेज की कमी और सर्कुलर इकोनॉमी में बढ़ावा मिलता है।
1: किस तरीके से डिजिटल इंडिया का एक्चुअल एग्जीक्यूशन यहां पर चल रहा है, तो जैसा कि आपने देखा इंडियन आर्मी की ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक और है प्लास्टिक वेस्ट और वेट वेस्ट के अलावा पेपर वेस्ट को किस तरीके से रिसाइकल और किया जाता है, कैसे मान्यता प्राप्त एजेंसीज तक ये सारे पेपर्स पहुंचते हैं। डिजिटल इंडिया की प्रॉपर एग्जीक्यूशन तो आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में की जा रही है। डिजिटलाइजेशन के बाद पेपर वेस्टेज या पेपर यूसेज कहें बहुत कम हो चुका है, डिजिटल चीजों का, डिजिटल माध्यम का उपयोग ज्यादा होता है, लेकिन जितने भी पेपर्स इस्तेमाल होते हैं जो जरूरी होते हैं उनको भी रिसाइकल किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
0: एक और वेस्ट जो हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है और वो है ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिससे हमारे मोबाइल, टैबलेट्स, चार्जर्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और भी कितने ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें शामिल हैं। और ये ई वेस्ट भी हमारी धरती के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। और इस ई वेस्ट को कैसे अपसाइकल किया जा रहा है, बता रहे हैं हवलदार अशफाक अहमद।
1: ड्राई वेस्ट की ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करते करते अब हम आ चुके हैं एक स्पेशल कैटेगरी वेस्ट की तरफ, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ई वेस्ट। बेहद जरूरी चीज जो हम सभी के घरों में मिलती है, छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े, वायर्स, प्लग्स, आप सभी ने देखा होगा, क्या वो सब चीजें ई वेस्ट का हिस्सा है? आइए जानते हैं हवलदार अशफाक अहमद जी से। सर स्वागत है शो में। जितनी भी चीजें हमारे घरों में मिलती हैं, क्या वो सब ई वेस्ट में आती हैं?
3: जय हिंद। हाँ बिल्कुल, वो सारी ई वेस्ट में आती हैं। ई वेस्ट एक अत्यंत गंभीर समस्या बन चुकी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ई वेस्ट की समस्या भी बढ़ती जा रही है। इसके लिए कैंटोनमेंट, RWS और ऑफिस एरियाज में ई वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स को एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि स्पेशल केयर वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें न सिर्फ ऑफिस एरिया के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बल्कि जवान अपने घरों से भी बैटरी, चार्जर, बल्ब जैसे इत्यादि लाके इसमें डाल सकते हैं। जो आप ई वेस्ट बॉक्स है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं, ये जवानों ने अपने घरों से लाके इसमें डाला हुआ है। इस ई वेस्ट को मान्यता प्राप्त एजेंसीज के सेग्रीगेशन प्लांट्स में भेजा जाता है, जहां पर उन्हें साइंटिफिक तरीके से रिसाइकल करके उनमें से सिल्वर, कॉपर, अल्मीनियम जैसे एलिमेंट को निकाल के दोबारा से उपयोग में लाया।
1: बिल्कुल, मतलब ग्रीन मेटल्स को हार्वेस्ट किया जाता है। इस सभी ई वेस्ट का उपयोग करके हम इन ग्रीन मेटल्स को निकालते हैं, इनको बनाते हैं और उसके बाद इसका दोबारा से इस्तेमाल होता है। ग्रेट इनिशिएटिव, एक्सलेंट इनिशिएटिव। सोचिए कितना ज्यादा कचरा हम घरों से, बाकी जितनी भी चीजें हैं वहां से इकट्ठा करके यहाँ पर लाते हैं और उसके बाद इससे कुछ और उपयोगी, कुछ यूजफुल बनाते हैं। एक्सलेंट इनिशिएटिव।

0: ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए हमारी इंडियन आर्मी कन्वेंशनल फ्यूल को नहीं बल्कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रही है। इसके बारे में बता रहे हैं हवलदार आशीष जी।
1: जय हिंद, मैं हवलदार आशीष। एनर्जी कंजर्वेशन वेस्ट मैनेजमेंट की तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ग्रीन इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने के लिए और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और सोलराइजेशन यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय सेना में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ऑलरेडी इनमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हमारे पास आर्मी हेडक्वार्टर कैंप में 25 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का एक फ्लीट है जिनका इस्तेमाल डिपार्टमेंटल ट्रांसपोर्ट और इंटरनल मोमेंट्स के लिए किया जा रहा है। एक इलेक्ट्रिक कार्स का एक फ्लीट है, साथ ही हाइड्रोजन बस और इलेक्ट्रिक बसेस का एक फ्लीट नजर आ रहा होगा। साथ एक इलेक्ट्रिक रिक्शो रखा हुआ है। इनके चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं जहां पे इन व्हीकल्स को चार्ज किया जाता है। एक व्हीकल को फुली चार्ज होने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है और एक फुली चार्ज्ड व्हीकल तकरीबन 300 किलोमीटर की एवरेज देता है। ऐसा करने से हम मंथली तकरीबन 4000 लीटर और ईयरली 48000 लीटर तक तेल की बचत कर रहे हैं। इन इनिशिएटिव्स को और इन व्हीकल्स को यूज करके हम न सिर्फ अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचा रहे हैं बल्कि अपने एनवायरनमेंट को भी साफ सुथरा रख रहे हैं।
0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के हमारे ग्रीन इनिशिएटिव मिशन लाइफ स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और अब बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में जानते हैं जो इमोशनली भी बहुत रिलेवेंट है और वो है वॉल ऑफ काइंडनेस। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें पुराने कपड़े, किताबें और यूनिफॉर्म शामिल हैं। हमारे फौजी भी अपनी यूनिफॉर्म के साथ भी इमोशनली अटैच्ड होते ही हैं। तो कैसे डिग्निफाइड वे में इन्हें डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, बता रहे हैं हवलदार विनोद कुमार और राइफल मैन दिनेश कुमार।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, आर्मी और ह्यूमैनिटी, ये दोनों शब्द हम सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन आर्मी के ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स इतने हैं जिन्हें गिनवाया जाए तो शायद ये दिन ये रात सब कम पड़ जाए। हम ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करने आए थे लेकिन यहाँ पर इनिशिएटिव्स के साथ साथ जो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है उसी के साथ साथ एक ऐसा इनिशिएटिव भी है जो काइंडनेस को और ज्यादा दर्शाता है। कैबिनेट है ये 155 किलो प्लास्टिक को इस्तेमाल करके बना है। सोचिए 155 किलो प्लास्टिक अब सड़कों में या कचरे के डिब्बों के आसपास नहीं बिखरा हुआ है, उसको इस्तेमाल करके ये शेल्फ बनाया गया है। ये अपने आप में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है जिसके बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं और इसके साथ साथ ही दिस इज एक्चुअली अ वॉल ऑफ काइंडनेस व्हिच मींस डोनेट व्हाट यू कैन टेक व्हाट यू नीड, मतलब अपनी मर्जी से आप डोनेट कर सकते हैं और जो भी जरूरत है वो आप यहां से ले जा सकते हैं। अमेजिंग इनिशिएटिव, ऐसा एक काम जो इंडियन आर्मी ही सोच सकती थी, इंडियन आर्मी ही कर सकती थी। आइए इस वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में हम और कुछ जानते हैं। हमारे साथ हैं हवलदार विनोद कुमार जी। सर, स्वागत है शो में। प्लीज हमें वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में कुछ बताइए।
3: जय हिंद, आज मैं आपको वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में परिचित करवाऊंगा। वॉल ऑफ काइंडनेस यानी नेकी की दीवार, ये एक सोशल सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट है जो कि रीयूज के कंसेप्ट को प्रमोट करता है। हमारे यहाँ काफी सारे लोग आते हैं जो कि अपने साथ घर में पड़ा एक्स्ट्रा सामान, जो कपड़े, जूते, किताबें, जहाँ यूनिफॉर्म, वो सब इधर डोनेट करते हैं। बुक्स की शेल्फ है और यूनिफॉर्म की, कपड़ों की, जिस अलमीरा में ये डोनेट करके जाते हैं और जहाँ से जरूरतमंद लोग जहाँ से उठा के बिना किसी हिचकिचाहट के ले जाते हैं। और बेसिकली हमारा उद्देश्य है कि चैरिटी नहीं बल्कि डिग्निटी के साथ जहाँ से सामान ले जा सके। बाकी अभी तक डेटा के अनुसार 10 टन से 12 टन तक कपड़े जहाँ से डोनेट हुए थे और काफी सारा सामान जरूरतमंद लोगों को दिया जा चुका है।
2: सो वॉल ऑफ काइंडनेस के साथ साथ एक और शेल्फ है जिसमें ट्राई सर्विसेज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की यूनिफॉर्म्स हैं, क्या इसके बारे में और बता सकते हैं?
3: देखिए, अभी आपने सारे रैक्स देख लिए, अभी ये लास्ट में मैं बताता हूँ यूनिफॉर्म रैक्स। इसमें हम तीनों सेनाओं के यूनिफॉर्म रखते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। देखिए, फौजी आदमी के लिए सबसे बड़ा प्राइड होता है उसकी यूनिफॉर्म, ये हमारे इमोशन को टच करती है और दूसरा ये हमारा प्राइड है। हम चाहते हैं इसका सही तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए, इसलिए हम इसे रिस्पेक्टफुल तरीके से इनको जहां रखते हैं तीनों सेना की यूनिफॉर्म को।
0: बता रहे हैं राइफल मैन दिनेश कुमार।
3: वॉल ऑफ काइंडनेस में अभी तक कपड़े, यूनिफॉर्म, इसके अलावा जहां पर बुक्स भी हैं। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम खत्म हुए थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक जिन लोगों ने अपने एग्जाम खत्म किए उनके बुक्स जहां पर काफी डोनेट की गई हैं और ये सभी डोनेट सामान जरूरतमंद लोगों के काम आएगा। और इसके अलावा अब जहां और भी बहुत सारी बुक्स हैं जैसे जेई, नीट, सीरियस और एसएसबी, सभी तरह की बुकें आपको देखने को जहां मिल जाएंगी। और और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जितने भी फोर्सेस हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो अफसर जवान वो अपने बच्चों के खिलौने किताबें ये सब जहाँ पर डोनेट करते हैं।
0: हमारे फौजी भाई कई बार डिफिकल्ट टेरेन्स में पोस्टेड होते हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी इजिली अवेलेबल नहीं होती है। ऐसे में हमारी आर्मी ने सोलर एनर्जी का प्रयोग कर डेवलप किए हैं सोलर हट्स और सोलर सिक्योरिटी चेक पोस्ट, जिसमें सोलर पावर से चलने वाले कई तरह के डिवाइसेस प्रयोग में लाए जाते हैं। आइए जानते हैं आर्मी के इस इनिशिएटिव के बारे में।
4: जब हम सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो सबको पता है सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हम नेचुरल सनलाइट को इस्तेमाल करके सोलर हट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसको हमने बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस में लगाया जिससे आने वाले कम्प्यूटर्स इसका बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पूरा सोलर पावर्ड है जिसमें चार फैंस की सुविधा दी गई है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, वायरलेस चार्जिंग पॉइंट और साथ ही साथ में अगर हम चाहे तो रिकॉर्डिंग सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की भी इसमें क्षमता है। सोलर हट तो आपने देख लिया, अभी आपके सामने दर्शाई गई है सोलर संतरी पोस्ट। जैसे कि हम सभी जानते हैं आर्मी देश के विभिन्न विभिन्न भागों में डिप्लॉयड है, जैसे जब भी आर्मी रिमोट एरिया में डिप्लॉयज होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होती है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए हमने इस इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी चेक पोस्ट को बनाया गया है। जैसे इसके अंदर एक फैन की सुविधा दी गई है जो गर्म और ठंडी हवा भी देता है, साथ ही साथ में इसमें मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और एक इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट की भी सुविधा दी गई है। ये एक मोबाइल संतरी पोस्ट है जिसको यहाँ से लेकर हम किसी भी जगह पे डिप्लॉय कर सकते हैं।
2: इंडियन आर्मी देश की सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी कर रही है। आज हमने ग्रीन इनिशिएटिव्स देखे जो इंडियन आर्मी ले रही है, किस तरीके से ई वेस्ट, वेट वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, हर तरीके से कैसे इंडियन आर्मी हमारे पर्यावरण को बचा रही है, फ्यूचर को बचा रही है। यहाँ पर हेडक्वार्टर कैंप आर्मी में आके हमने सब जाना किस तरीके से आर्मी ये बेहतरीन इनिशिएटिव्स कर रही है और लगातार हमारे फ्यूचर को सेफगार्ड करके सस्टेनेबल तरीके से बेहतर बना रही है। हम इस वक्त प्रोजेक्ट इंचार्ज मेजर अजीत मोरे के साथ हैं। सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आप क्या कहेंगे, ये ग्रीन इनिशिएटिव्स कितने जरूरी हैं, किस तरीके से आर्मी पूरे देश के सामने इस प्रेरणा को रख रही है?
4: थैंक यू वैभव, मैं आपको एक कहना चाहूंगा, जो हमारी सोच है वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ तक ही सीमित नहीं है बल्कि पर्यावरण सुरक्षा में हम इसको कल्चरल चेंजेस लाना चाहते हैं। जिस प्रोडक्ट पे हम अभी बैठे हैं ये अपसाइकल प्रोडक्ट, हमने एक चौथा पहलू भी इसमें जोड़ दिया है। साथ में आपको कहना चाहूंगा, जब वेस्ट मैनेजमेंट या पर्यावरण संरक्षण की बातें आती है तो इसमें तीन बेसिक ह्यूमन टच पॉइंट्स, एक है इंडिविजुअल, एक है कम्युनिटी और तीसरा है अथॉरिटी, जिसमें आप लोकल बॉडीज होगी, आपकी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो जब तक ये इंडिविजुअल के अंदर से नहीं आएगा तब तक हमारा एरिया या हमारा पर्यावरण साफ नहीं होगा। ये आपको मैं जोर देकर कहना चाहूंगा, हमारे देश का हर एक सिटीजन, हर एक बंदा एक पर्यावरण योद्धा है और जब तक उसके अंदर से ये आएगा तभी हम हमारे देश के या हमारे गवर्नमेंट के स्वच्छ भारत अभियान को पूरा कर पाएंगे। तो कल हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं, तो ये हमारे गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है स्वच्छ भारत अभियान, मिशन लाइफ अभियान, इसको सफल बनाने के लिए हम सब देशवासी मिलकर इसको योगदान दें। जय हिंद।
0: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

देश की रक्षा और प्रकृति की रक्षा दोनों एक साथ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर सेना का संदेश है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आज का संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित था, जिसमें जीरो वेस्ट जोन से लेकर सोलराइजेशन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से ई वेस्ट मैनेजमेंट, साथ ही ऑर्गेनिक वेस्ट का साइंटिफिक मैनेजमेंट और बायोगैस के अलावा हमने जाना कि एरोबिन कंपोस्टिंग क्या है और कैसे इससे खाद बनाई जाती है, और ये भी कि वॉल ऑफ काइंडनेस के माध्यम से पुराने कपड़े, जूते, किताबें, बच्चों के खिलौने डोनेट करके रीयूज कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जा रहा है। हम आशा करेंगे कि इंडियन आर्मी के अपनी धरती और प्रकृति के प्रति इस जज्बे से हम भी प्रेरणा लेकर अपना योगदान अवश्य देंगे और इसे बेहतर, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की कोशिश करते रहेंगे। आज के संदेश टू सोल्जर्स के इस स्पेशल शो की प्रस्तुतकर्ता थी राजलक्ष्मी और मेरे सहयोगी थे ओबी पर वैभव श्रीवास्तव, और आप सुन रहे हैं मेरी आवाज। मेरा नाम है शाहिद।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंडो पर रात 9 बजे।
3: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। आकाशवाणी का यह जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 5 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक मुख्य समाचार प्रसारित होंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। धनबाद रेल मंडल के रजहरा स्टेशन पर हुए मालगाड़ी हादसे के कारण रांची मंडल की कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। आज खुलने वाली रांची सासाराम एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है, जबकि कल सासाराम रांची एक्सप्रेस भी रद्द रहेगी। इसके अलावा रांची चौपन एक्सप्रेस आज बरवाडी स्टेशन पर ही समाप्त हो जाएगी। लातेहार के मनिका में भारी मात्रा में सरकारी दवाइयां फेंके जाने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ गरीब मरीज अस्पतालों में दवाओं के लिए भटक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जनता के टैक्स के पैसे से खरीदी गई लाखों रूपये की दवाइयां जंगलों में फेंकी जा रही है। रांची के पुराना विधानसभा सभागार में आज संगठन विस्तार को लेकर कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने बैठक में देरी से आने वाले पदाधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जताई और अनुशासन बनाए रखने की हिदायत दी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ आशा लकड़ा ने आज बोकारो सर्किट हाउस में धनबाद और बोकारो जिले से जुड़ी 20 शिकायतों की सुनवाई की। इस दौरान बोकारो डीसी अजय नाथ झा और एसपी नाथू सिंह मीणा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मालदा मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक अमरिंद्र कुमार मौर्य ने आज गोड्डा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि यहां बन रहा वॉशिंग पिट एक महीने में पूरा हो जाएगा, जिससे गोड्डा से लंबी दूरी की नई ट्रेनों का परिचालन शुरू हो सकेगा। अहमदाबाद में आयोजित 15वीं राष्ट्रीय बाइथल ट्राइथल चैंपियनशिप 2026 में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण, एक रजत और तीन कांस्य पदक जीते हैं। प्रतियोगिता के बाइथल स्पर्धा में प्रेम किशोर महतो ने स्वर्ण पदक जीता, वहीं दीपांशु सिंह और अतासी कुमार ने कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:02 हुए हैं। दैनिक कार्यक्रम युववाणी थोड़ी ही देर में।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। प्रस्तुत है युवाओं को संबोधित दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर 102.4 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आपकी दोस्त प्रिया। स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन मुद्दों पर जो सीधे तौर पर हमसे, हमारे देश से और हमारे भविष्य से जुड़े हैं। आज का हमारा यह कार्यक्रम युवाओं के नाम है। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य है, साथ ही जानेंगे कि एक देश के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड कितना फायदेमंद होता है। इसी के साथ जानेंगे स्वच्छता में हमारे देश के युवाओं की भागीदारी के बारे में और सरकार द्वारा चलाए गए स्किल इंडिया मिशन के बारे में, और अंत में नजर डालेंगे आज की ताज़ा खबरों पर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह सफ़र।

दोस्तों, जब भी हम जनगणना शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? सरकारी कर्मचारियों का घर घर आना, फॉर्म भरना और लोगों की गिनती करना। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह सिर्फ लोगों के गिनने का काम नहीं है, यह हमारे देश के भविष्य की तकदीर लिखने का नक्शा है और इसी से जुड़ा है एक बेहद ही महत्वपूर्ण शब्द, डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसंख्यकीय लाभांश। भारत इस समय दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारी आधी से ज्यादा आबादी कामकाजी उम्र में है। यह हमारे लिए कितना फायदेमंद है, इसी को समझने के लिए आपको सुनाते हैं एक शिक्षिका से की गई भेंट वार्ता।

0: नमस्कार मैम, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद प्रिया, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: मैम, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि जनगणना आखिर होती क्या है और यह हमारे देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है।
1: प्रिया, जनगणना की बात करें तो जनगणना किसी देश की आबादी, आयु, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्थिति की जानकारी जुटाने की प्रक्रिया है। जनगणना हमें बताती है कि देश में कितने बच्चे, युवा और बुजुर्ग हैं। इसी जानकारी के आधार पर सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य योजना और विकास की योजना बनाती है। प्रिया, क्या आप जानती हैं भारत देश की सबसे बड़ी विशेषता क्या है?
0: क्या है?
1: भारत देश की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस देश में युवाओं की संख्या अधिक है।
0: मैम, हमारे श्रोताओं को सरल शब्दों में समझाइए कि डेमोग्राफिक डिविडेंड आखिर होता क्या है और जनगणना से इसका क्या कनेक्शन है।
1: प्रिया, बहुत सीधा सा गणित है। जब किसी देश में काम करने वाले आयु वर्ण यानी लगभग 15 से 64 वर्ष की लोगों की संख्या आबादी से अधिक होती है, तब इस देश को डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ मिलता है। सरल शब्दों में कहें तो कमाने वाले हाथ ज्यादा हैं और खाने वाले मुंह कम। और जनगणना ही हमें बताती है कि हमारी यह युवा शक्ति कितनी बड़ी है और कब तक रहने वाली है।
0: मैम, तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश भारत के लिए यह एक जैकपॉट जैसी स्थिति है।
1: जी प्रिया, बिल्कुल सही कहा आपने।
0: मैम, यह स्थिति भारत के लिए कितनी फायदेमंद है? हमारे देश को इससे क्या-क्या आर्थिक और सामाजिक लाभ मिल रहे हैं?
1: प्रिया, ये सिर्फ फायदेमंद ही नहीं बल्कि भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने की सबसे बड़ा अवसर है। अगर हम बात फायदे की करें तो पहला फायदा आर्थिक विकास तेजी से होना, अधिक युवा कार्यबल का मतलब अधिक उत्पादन, अधिक आय और अधिक का राजस्व। दूसरे फायदे की बात करें तो वो है वैश्विक प्रतिस्पर्धा। भारत की युवा शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी कार्य शक्ति बन सकती है। तीसरी फायदे की बात करें तो वो है सामाजिक विकास। शिक्षित और जागरूक युवा समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। लेकिन प्रिया, एक बात हमेशा यदि याद रखिए कि यदि युवाओं को गुणवत्ता शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार नहीं मिले तो यही अवसर चुनौती भी बन सकती है।
0: मैम, इन चुनौतियों का सामना हमारे युवा साथी कैसे कर सकते हैं?
1: प्रिया, हमारी सरकार विभिन्न कौशल विकास योजनाएं जैसे स्किल इंडिया चला रही है। इसका उद्देश्य है युवाओं की रोजगार योग्य बनाना और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। अतः मैं बस इतना ही कहूंगी कि हमारे देश की युवाओं को भी शिक्षा अनुशासन पर ध्यान देना होगा।
0: जी मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे युवा साथी इस बात का अवश्य ही ध्यान रखेंगे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यह जानकारी साझा करने के लिए। तो दोस्तों, अभी इस वार्ता के जरिए आपने जाना जनगणना, डेमोग्राफिक डिविडेंड और उसके फायदे के बारे में। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे लिए एक सोने की खान की तरह है। अगर इस युवा ऊर्जा को सही दिशा, सही शिक्षा और सही संसाधन मिले तो भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, यह फायदा तभी मिलेगा जब हम इस वर्क फोर्स को कुशल और स्वस्थ बना पाएंगे। इसी कड़ी से हमारा आज का दूसरा विषय जुड़ता है, स्वच्छता में युवाओं की भागीदारी और भूमिका। बात अगर स्वच्छता और युवा की है तो यह तो सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, स्वच्छता स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। आज के समय में युवा सिर्फ सोशल मीडिया पर बदलाव की बातें नहीं कर रहे बल्कि जमीन पर उतरकर काम कर रहे हैं। चाहे वह समुद्र तटों की सफाई हो, प्लास्टिक मुक्त अभियान हो या फिर अपने मोहल्ले को साफ रखना हो, युवाओं की ऊर्जा हर जगह दिख रही है। बात अगर स्वच्छता की करे तो स्वच्छता केवल सड़कों और गलियों को साफ रखने तक सीमित नहीं है। यह हमारे घर, विद्यालय, कार्यस्थल और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी भी है। स्वच्छ वातावरण से बीमारियां कम होती है, स्वास्थ्य बेहतर रहता है और समाज में सकारात्मक सोच विकसित होती है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देशों में से एक है, इसलिए तो कहते हैं कि स्वच्छ भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए एक युवा से जानते हैं कि किन तरीकों से वो स्वच्छता में अपना योगदान दे सकते हैं। नमस्कार अनीशा, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: नमस्कार प्रिया, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: अनीशा, आप हमारे युवा श्रोताओं को बता सकती हैं कि एक युवा किन तरीकों से स्वच्छता में अपना योगदान दे सकते हैं?
2: जी प्रिया, बिल्कुल। युवा अनेक तरीकों से स्वच्छता में अपना योगदान दे सकते हैं, जैसे अपने आसपास सफाई बनाए रखना, प्लास्टिक के उपयोग को कम करना, लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना, सफाई अभियानों में भाग लेना, सोशल मीडिया के माध्यम से स्वच्छता का संदेश फैलाना। साथियों, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हम सब युवा स्वयं आगे बढ़कर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो समाज के अन्य लोग भी प्रेरित होंगे।
0: जी अनीशा, बिल्कुल सही कहा आपने। धन्यवाद अनीशा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, अभी इस वार्ता के जरिए आपने जाना स्वच्छता में युवाओं की भूमिका के बारे में। एक बात हमेशा याद रखिएगा, स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। दोस्तों, देश सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरों से नहीं बल्कि वहां के नागरिकों से बनता है। अगर हमें विकसित भारत चाहिए तो स्वच्छ भारत हमारी पहली शर्त है। आइए हम सभी एक संकल्प लें, ना गंदगी करेंगे ना गंदगी करने देंगे। तो दोस्तों, इसी संदेश के साथ चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत, जो कि फिल्म द डिप्लोमैट से लिया गया है। इसके गीतकार है मनोज मुंतशिर और संगीतकार है मनन भारद्वाज, और अपनी आवाज दी है हरिहरन ने।

दोस्तों, अभी आपने सुना यह प्यारा सा गीत। चलिए अब अपने सफर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसे अभियान की जो युवाओं के सपने को नई उड़ान दे रहा है और विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। वो है स्किल इंडिया मिशन। दोस्तों, किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग होते हैं, और जब ये लोग कुशल हो, प्रशिक्षित हो और आत्मविश्वास से भरपूर हो तो विकास की गति कई गुना बढ़ जाती है। भारत दुनिया में सबसे युवा देशों में से एक है। इस युवा शक्ति को सही दिशा देने के लिए वर्ष 2015 में स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य है युवाओं को ऐसा प्रशिक्षण देना जिससे वे रोजगार प्राप्त कर सके, स्वरोजगार शुरू कर सके और देश की प्रगति में योगदान दे सकें।

करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, जब देश का युवा हुनरमंद होगा तभी वह आत्मनिर्भर बनेगा और तभी हमारा देश आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर तेजी से कदम बढ़ाएगा। दोस्तों, जीवन में जब भी मुश्किलें सामने आती है तो हमारा हौसला और हमारा हुनर ही हमें आगे ले जाता है। जब आपके हाथों में हुनर होगा तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इसीलिए तो कहते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अगर इरादे फौलादी हैं और हाथों में हुनर का जादू है तो हम हार नहीं सकते। हम आगे बढ़ेंगे, हम अपनी किस्मत खुद बदलेंगे और हर हाल में जीतेंगे, क्योंकि दिल ये जिद्दी है। आइए सुनते हैं एक शानदार गाना जो हमारे इसी जज्बे को सलाम करता है।

दोस्तों, अभी आपने सुना यह शानदार गाना जो कि फिल्म मैरी कॉम से लिया गया था। इसके गीतकार थे प्रशांत इंगोले, संगीतकार थे शशि सुमन और अपनी आवाज दी थी विशाल ददलानी ने। दोस्तों, आज के इस पूरे सफर में जहां हम तरक्की, हुनर और देश बदलने की बात कर रहे हैं, हमें एक और गंभीर विषय पर खुलकर बात करनी होगी जिसे अक्सर समाज से छुपाया जाता है। चलिए, अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम बात करते हैं एक ऐसे विषय पर जो युवाओं के जीवन को प्रभावित कर रहा है, वो है युवाओं में डिप्रेशन और उसका समाधान। तो दोस्तों, चलिए इसी विषय को गहराई से समझने के लिए

0: सुनते हैं एक डॉक्टर के साथ की गई टेलीफोनिक वार्ता।
1: नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: नमस्कार प्रिया, सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
1: सर, हमारे श्रोता आपसे जानना चाहेंगे कि डिप्रेशन होता क्या है।
2: देखिए प्रिया, हर व्यक्ति कभी ना कभी दुखी या निराश महसूस करता है, लेकिन यह भावना लंबे समय तक बनी रहे और जीवन में सामान्य कार्यों को प्रभावित करने लगे तो इससे ही डिप्रेशन कहा जाता है। आज के युवाओं में पढ़ाई का दबाव, प्रतियोगी परीक्षाएं, रोजगार की चिंता, सोशल मीडिया का प्रभाव, पारिवारिक अपेक्षाएं और अकेलापन जैसे कई वजह तनाव और अवसाद का कारण बन रही हैं।
1: सर, हमें कैसे पता चलता है कि एक युवा डिप्रेशन का शिकार हो गया है? उसके लक्षण क्या है?
2: डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति के कुछ सामान्य लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे लगातार उदासी या निराश महसूस होना, किसी काम में रुचि ना रहना, आत्मविश्वास की कमी, नींद की समस्या जैसे नींद ना पूरा होना, थकान और कमजोरी महसूस करना।
1: तो सर, इसका हमारे युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है?
2: देखिए, डिप्रेशन का असर केवल मानसिक स्वास्थ्य पर नहीं पड़ता, बल्कि पढ़ाई, करियर, रिश्तों और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। कई बार युवा अपनी समस्या किसी से साझा नहीं कर पाते, जिससे स्थिति और गंभीर हो जाती है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी खुलकर बात करनी चाहिए।
1: तो सर, अब सवाल यह है कि इसका समाधान कैसे किया जा सकता है?
2: समाधान की बात करें तो सबसे पहले पहला कदम है कि युवाओं को अपनी समस्या के बारे में अपने माता पिता, मित्रों, शिक्षकों या किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ बात करनी चाहिए। दूसरा, नियमित व्यायाम, योग और अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। शारीरिक गतिविधियां मानसिक तनाव को कम करने में मदद करती हैं। पर्याप्त नींद और संतुलित आहार लें। सोशल मीडिया का सीमित और सकारात्मक उपयोग करें। और यदि समस्या लेते समय लंबे समय तक बनी रहे तो मानसिक स्वास्थ्य की सहायता लेने में संकोच ना करें।
1: जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सभी जानकारियां हमारे युवा साथियों के साथ साझा करने के लिए।
0: तो दोस्तों, याद रखिए, मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी और साहस की निशानी है। मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य। यदि हम एक दूसरे की बात सुने, सहयोग करें और संवेदनशील बने तो कई युवाओं को डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद मिल सकती है। युवा किसी भी राष्ट्र का भविष्य होते हैं। उनका मानसिक रूप से स्वस्थ और आत्मविश्वासी होना देश की प्रगति के लिए आवश्यक है। आइए संकल्प ले कि हम मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करेंगे और जरूरत पड़ने पर सहायता लेने से नहीं हिचकिचाएंगे। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है, अब जल्दी से लेते हैं आज का क्विक डोज। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने असिस्टेंट लोको पायलट के 11,127 पदों पर आवेदन मांगे हैं। अंतिम तिथि 14 जून 2026 है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 5,000 अप्रेंटिस पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 8 जून 2026 पास आ चुकी है। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अंत में बस यही कहूंगी कि युवा शक्ति ही राष्ट्र की असली शक्ति है। जब युवा जागरूक, शिक्षित और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तब देश विकास की नई ऊंचाइयों को छूता है। इसी संदेश के साथ मैं प्रिया आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी एक नए

युवाओं को संबोधित दैनिक कार्यक्रम युववाणी अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्रमिक बंधुओं के लिए दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने।

कार्यक्रम कल कारखाने सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को इंदु का प्यार भरा नमस्कार और आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। और श्रोताओं आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले बात कर लेते हैं उद्योगों में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कड़े नियम क्या हैं। जी हाँ श्रोताओं, जब एक मजदूर या कर्मचारी सुबह अपने घर से काम के लिए निकलता है तो उसका परिवार इस उम्मीद में रहता है कि शाम को वह सकुशल घर लौटेगा, लेकिन कभी कभी सुरक्षा नियमों की अनदेखी, एक छोटी सी लापरवाही या कड़े नियमों का ना होना किसी हंसते खेलते परिवार की खुशियां छीन लेता है। जी हाँ श्रोताओं, इसलिए यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि उद्योगों में सुरक्षा के कड़े नियम कोई औपचारिकता नहीं बल्कि एक अनिवार्य जीवन कवच है। वहीं श्रोताओं, हम देखें कि सुरक्षा के कड़े नियम का मतलब सिर्फ हेलमेट या सुरक्षा जूते पहनना नहीं है बल्कि इसका दायरा बहुत बड़ा है, जिसमें शामिल है पहला नियमित प्रशिक्षण। जी हां श्रोताओं, हर कर्मचारी को मशीनों और आपातकालीन स्थितियों से निपटने की पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है मशीनों का सही रखरखाव। समय समय पर मशीनों की जाँच होने से बड़ी दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। और तीसरा है सुरक्षित कार्य वातावरण। जी हां श्रोताओं, गैस रिसाव, आगजनी या खदानों में धनसान जैसी आपदाओं से बचने के लिए अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालियों का होना अति अनिवार्य है। इसलिए श्रोताओं, हमें यह समझना होगा कि दुर्घटनाएं कहकर नहीं आती, लेकिन सुरक्षा की तैयारी हमारे हाथ में है। कड़े नियम और उनका सख्ती से पालन ही उद्योगों की असली ताकत है।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: श्रोताओं आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं ये मधुर गीत।

तुम सा नहीं देखा, इस फिल्म का ये गीत श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। गीत लिखा था समीर ने और संगीत नदीम श्रवण का था।

0: श्रोताओं, वन हमारे जीवन का आधार है, लेकिन आज की तस्वीर थोड़ी बदल रही है। तरक्की की अंधी दौड़ में हम भूलते जा रहे हैं कि कुल्हाड़ी पेड़ पर नहीं बल्कि हमारे भविष्य पर चल रही है। कंक्रीट की इमारतें खड़ी करने के लिए हम सदियों पुराने जंगलों को पल भर में साफ करते जा रहे हैं। तो चलिए श्रोताओं, आखिर वन का हमारे जीवन में क्या और कितना महत्व है, इस पर आपको सुनवाते हैं पूर्व प्रसारित वार्ता। वार्ताकार है राजेश कुमार सिंह।
1: वनों के अंतर्गत उन सभी पेड़ एवं पौधों का समूह आता है जो समस्त धरती के एक तिहाई भाग में फैले हुए हैं, तथा पर्यावरणीय परिभाषा के अनुसार इसे सदैव हरित रंगों के माध्यम से दर्शाया जाता है। प्रकृति और पर्यावरण में तथा मनुष्य के जीवन में वनों की समान महत्ता तथा उपयोगिता होती है। वन धरती पर सदियों से है तथा ये वन ही है जिनके कारण विश्व की जैव विविधता में निरंतरता बनी रहती है। किसी राष्ट्र में विद्यमान वन अथवा जंगल उस राष्ट्र की न केवल आर्थिक वरन सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रगति में भी भागीदारी करते हैं। वन तथा जंगल आर्थिक विकास, जैव विविधता, मनुष्य की आजीविका तथा पर्यावरणीय अनुकूल प्रतिक्रियाओं के लिए उपयोगी तथा आवश्यक होते हैं। परंतु वनों के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में जलवायु की स्थिरता, जल चक्र का विनियमन तथा सैकड़ों हजारों जीवों को निवास स्थल प्रदान करना है। जनसंख्या वृद्धि, निर्धनता एवं निम्न विकास भारत में पर्यावरण में होने वाले समस्याओं के लिए कुछ हद तक उत्तरदायी है। वन तथा वृक्ष ऊर्जा के अक्षय स्रोत हैं तथा इसी कारण ये किसी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में अहम भागीदार होते हैं। इसके साथ ही यह वायु को शुद्ध करके पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने का कार्य भी बखूबी निभाते हैं। भारत उन गिने चुने राष्ट्रों में से एक है जिन्होंने 1894 तक वन अधिनियम पारित कर लिए थे। उसके बाद वर्ष 1952 तथा 1988 में इनमें संशोधन भी किए गए। इन वन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वनों का बचाव, संरक्षण एवं उचित विकास करना है। भारत की वन नीति के प्रमुख उद्देश्य परिस्थिति संतुलन के संरक्षण एवं पुनर्नवीकरण के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता को बरकरार करना, प्राकृतिक विरासतों का संरक्षण करना, नदी झील तथा तालाबों के किनारे पर मृदा अपरदन तथा अनाच्छादन की प्रक्रिया को रोकना, राजस्थान एवं आसपास के मरुस्थल

लिए क्षेत्र में अधिक संख्या में रेत के टीलों को बनने से रोकना, अधिक मात्रा में वृक्षारोपण एवं सामाजिक वानिकी के माध्यम से वनों तथा वृक्षों का क्षेत्र विस्तार करना, ग्रामीण एवं आदिवासी निवासियों की ईंधन, चारे, फल, लकड़ी इत्यादि से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, राष्ट्रीय स्तर पर वनों से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वनों की गुणवत्ता में सुधार लाना, वन से प्राप्त उत्पादों का कुशल उपयोग एवं लकड़ी के उपयोग में कटौती को बढ़ावा देना, लोगों की सहायता से आंदोलन के रूप में इन नियमों का उचित पालन करवाना तथा रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए वनों जंगलों पर दबाव कम करना। वनों का उपयोग और हमारे जीवन में उनका क्या महत्व है, किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में वनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वृक्षों से हमें प्रमुख रूप से लकड़ी तथा ईंधन प्राप्त होता है, जिसका उपयोग घरों तथा उद्योगों में किया जाता है। वृक्षों से प्राप्त लुगदी, तख्ते, माचिस की लकड़ी तथा अन्य पदार्थ अनेक घरेलू उपयोगों में काम आते हैं। वृक्षों से ही हमें कुछ कम प्रमुख परंतु महत्वपूर्ण उत्पाद जैसे बांस, गन्ने, घास, अनेक प्रकार के तेल, औषधि युक्त पौधे, लाख, वसा, गोंद, डाई इत्यादि प्राप्त होते हैं, जिनका मूल्य विदेशी विनिमय की दृष्टि से काफी अधिक होता है। वृक्षों के कारण हम अनेक प्रकार के आंधी तूफानों, अपरदन, लू आदि से भी सुरक्षित रहते हैं। पारिस्थितिकीय संतुलन की दृष्टि से वृक्ष बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सामाजिक वानिकी परियोजना लकड़ी की कमी वाले शहरों में ईंधन, चारे तथा अन्य उत्पादों की पूर्ति हेतु प्रस्तावित की गई थी। वृक्षों के बचाव के लिए बड़ी संख्या में प्रमुख रूप से वृक्षारोपण, वनों का पुनर्जीवीकरण एवं नवीनीकरण, वन में निवास, चरवाहों पर नियंत्रण इत्यादि का अनुपालन करने की आवश्यकता है। धरती का 90% जीव विविधता, चाहे वह वृक्ष हो या जीव, वनों में ही निवासित है। प्रत्येक वन अपने पशुओं एवं वृक्षों की सहूलियत के अनुसार स्वयं के वातावरण को परिवर्तित करने में सक्षम है। यही कारण है कि धरती से वनों की समाप्ति के साथ ही सभी जीव एवं वृक्ष भी विलुप्त हो जाएंगे एवं वनों के अभाव में किसी प्रकार का जीवन असंभव होगा। वृक्ष वातावरण की वायु को शुद्ध करके हानिकारक तत्वों को मनुष्य के शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। दिन के समय यह स्वयं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तथा ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ते हैं। इसी ऑक्सीजन को मनुष्य अपने शरीर में सांस के जरिए ग्रहण करता है। इस प्रकार वृक्ष वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों को कम करके ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं एवं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को कम करते हैं। वृक्ष वाष्पन उत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा वातावरण के तापमान को नियंत्रित करते हैं एवं धरती की जलवायु को स्थिर बनाए रखते हैं। शहरी क्षेत्रों में वृक्षों की अधिकता एक तरह से एयर कंडीशनर के उपयोग में कमी ला सकती है एवं वातावरण से हानिकारक क्लोरोफ्यूलोरो कार्बन में कटौती कर सकती है। अधिक वन वाले क्षेत्र सूर्य से उत्पन्न अत्यधिक उष्म विकिरण को रोककर वर्षा के जरिए तापमान को स्थिर रखने में उपयोगी सिद्ध होते हैं। वृक्ष एवं पौधे अपने पत्ते एवं शाखाएं गिराकर मिट्टी में पोषण को वापस लाने का कार्य करते हैं, जिससे मिट्टी की उपजता बनी रहती है। ये मिट्टी को महीन कणों में तोड़ते हैं, जिससे कि मिट्टी में जल आसानी से प्रवेश कर सके। वृक्ष की जड़ें अत्यधिक जल को सोख कर जल के बहाव को कम करती है, जिससे मिट्टी का कटान अथवा मृदा अपरदन में कमी आती है तथा मृदा की उपजाऊ शक्ति बरकरार रहती है। वृक्ष नदी तालाब से जल वाष्पन के जरिए संघनन की प्रक्रिया के पश्चात वर्षा करवाने के लिए भी उत्तरदायित्व होते हैं। वृक्षों का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में औषधि के लिए, शोध फार्मास्यूटिकल कार्यों के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए वृक्षों से उपयोगी पदार्थ को निकाला जाता है। इसके अलावा वृक्ष तथा वन हमेशा से एक आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। ये देश विदेश से अनेक पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे देश के आर्थिक विकास में सहायता प्राप्त होती है एवं अन्य देश में भारत की साख भी मजबूत होती है। परंतु जिस गति से वृक्षों का कटान निरंतर चल रहा है, इससे शीघ्र ही सभी वृक्ष एवं वन
समाप्ति

0: की कगार पर आ पहुंचेंगे। मनुष्य की वनोन्मूलन की प्रकृति के कारण भारत एवं समस्त विश्व के सामने परिस्थितिकीय असंतुलन एवं जलवायु परिवर्तन का खतरा मंडरा रहा है। भारत की जलवायु, मौसम, वर्षा की मात्रा एवं मृदा की गुणवत्ता पर इसका बुरा असर साफ देखा जा सकता है। मनुष्यों को वृक्षों की महत्ता समझाने की अत्यंत आवश्यकता है। उन्हें ये समझना होगा कि वृक्ष है तो जीवन है, वृक्ष नहीं तो कुछ भी नहीं। वृक्षों की उपयोगिता न सिर्फ दैनिक जीवन बल्कि प्रतिपल, न सिर्फ निचले स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर है।
1: वनों का महत्व, श्रोताओं, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित वार्ता। वार्ताकार थे राजेश कुमार सिंह।

श्रोताओं, वारिस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाज़ में। गीत लिखा था वर्मा मलिक ने और संगीत उत्तम जगदीश का था।

और श्रोताओं, आइए चलते चलते बातचीत कर लेते हैं अल्पसंख्यकों के कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। जी हाँ श्रोताओं, एक मजबूत और खूबसूरत समाज वही होता है जहाँ हर वर्ग, हर समुदाय कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। हमारे देश की विविधता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और इस ताकत को बनाए रखने के लिए समाज के हर हिस्से का विकास होना बेहद जरूरी है। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं हमारे अल्पसंख्यक समुदायों के लिए चलाई जा रही कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, जो शिक्षा, रोजगार और हुनर को बढ़ावा देकर विकास के नए रास्ते खोल रही है। तो चलिए श्रोताओं, आज इसी के साथ कार्यक्रम कल कारखाने से मुझे यानी इंदु को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे श्रमिक बंधुओं के लिए दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर।

के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर। हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: श्री टंडन ने कहा कि दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची थीं। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत किया है और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। सत्र में भाग लेने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी नेता मजबूत और अधिक समृद्ध पूर्वोत्तर के निर्माण के अपने संकल्प में एकजुट हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार 2 गुना करने को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में ये 2 गुने से भी अधिक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूअल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूअल तकनीक की शुरुआत केवल एक नए वाहन की शुरुआत नहीं है बल्कि भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूअल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। इससे देश को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है और गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता के मामले में विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता का मुख्य कारण यह है कि देश के नागरिकों ने ये समझ लिया है कि वे अपनी छतों पर बिजली खुद पैदा कर सकते हैं और बिजली बिल 0 हो सकता है। इसके अलावा श्री जोशी ने आज विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक में सरकारी भवनों के छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने की प्रगति की भी समीक्षा की। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। भारतीय टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। 5 बार की विजेता भारतीय टीम और मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश आमने सामने होंगे। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज का दिन भारत के लिए मिला जुला रहा। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी एरोन ताई और कैंग खाई जिंग को कड़े मुकाबले में हराया, लेकिन पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी कड़े संघर्ष के बावजूद पराजित हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले सभी श्रोताओं को अपने रेडियो दोस्त सुरेंद्र टूडू का प्यार भरा जोहार। श्रोता मित्रों, आज के कार्यक्रम में है बहुत कुछ, जिसमें सबसे पहले चर्चा में हम बातें करेंगे ज्यादा यूरिया यानी कि डीएपी का नुकसान, पानी, दूषित पानी से हर कोई परेशान। इसके बाद अगली चर्चा में हम बातें करेंगे गांव के विकास का संकल्प, जी राम जी। फिर होगी और एक चर्चा, नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है और इस पर पंजीकरण क्यों जरूरी है, इन सब विषयों पर बातें करेंगे। तो श्रोता मित्रों, कार्यक्रम में इतना कुछ। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की चर्चा से, और चर्चा का विषय है ज्यादा यूरिया डीएपी का नुकसान, दूषित पानी से हर कोई परेशान। किसान भाइयों, खेतों में ज्यादा यूरिया और डीएपी डालने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घटती है। जिससे पानी भी जहरीला हो जाता है। यूरिया और डीएपी का अत्यधिक प्रयोग से होने वाले मुख्य नुकसान के बारे में आइए बातें करते हैं। सबसे पहला तो है मिट्टी की सेहत खराब, यानी कि अधिक डीएपी डालने से मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा अनियंत्रित हो जाती है, जिससे जिंक जैसे जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों को नहीं मिल पाते, कीटों और बीमारियों का प्रकोप भी हो जाता है। ज्यादा यूरिया से फसल की पत्तियां ज्यादा मुलायम हो जाती है, जिससे रस चूसने वाले कीड़े जैसे कि माहू या फुदका तथा तना छेदक आसानी से हमला करते हैं। अगला है दूषित जल और स्वास्थ्य पर असर। जब यूरिया मिट्टी में नाइट्रेट बनाता है और यह पानी में घुलकर जमीन के अंदर जाता है, तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा पैदा होता है। इससे बचने के लिए आइए जाने क्या क्या समाधान है। मृदा परीक्षण सबसे पहले तो करें, मिट्टी की जांच कराए और जरूरत के अनुसार ही खाद डाले। इसके अलावा जैविक विकल्प में यूरिया डीएपी पर निर्भरता कम करने के लिए जीवामृत, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। श्रोता मित्रों, अब आइए जानते हैं गांव के विकास का संकल्प यानी जी राम जी। ग्रामीण विकास का संकल्प और जी राम जी भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम है। जिसका उद्देश्य गांव को आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित बनाना है। मां नरेगा के स्थान पर लाए गए इस नए अधिनियम का पूरा नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन है। जी राम जी अधिनियम के मुख्य संकल्प और विशेषताओं के बारे में आइए बात करते हैं। सबसे पहला था है 125 दिनों की रोजगार गारंटी। इसके तहत हर ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के वैधानिक अकुशल शारीरिक श्रम की गारंटी प्रदान की जाती है। इसके बाद आता है पारदर्शिता और त्वरित भुगतान। इसके अंतर्गत बायोमेट्रिक उपस्थिति, जियो टैगिंग और डिजिटल प्रणाली का उपयोग करके भ्रष्टाचार को रोका जाएगा और सीधा लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाएगा।

0: इसके बाद है बेरोजगारी भत्ता। यदि काम मांगने के बाद तय समय सीमा के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो कानूनी बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। अगला है विकसित ग्राम पंचायत योजना। ग्राम पंचायतों को केवल मजदूरी देने तक सीमित न रखकर योजना का निर्माण और स्थानीय विकास कार्यों जैसे जल सुरक्षा, ग्रामीण सड़कें और आजीविका के साधन की योजना बनाने के वास्तविक अधिकार दिए गए हैं। यह योजना विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए गांव में स्थानीय आजीविका और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का कार्य करती है। इस ऐतिहासिक योजना के बारे में अधिक जानने या इसका लाभ उठाने के लिए PIB प्रेस विज्ञप्ति पर आधिकारिक जानकारी पढ़ सकते हैं। किसान भाइयों, अब आइए आपको जानकारी देते हैं नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि NFDP भारत सरकार के मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक एकीकृत डिजिटल सिस्टम है। यह मछली पालकों, मछुआरों और उद्यमियों के लिए एक आधार कार्ड की तरह है, जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र को संगठित करना और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है। आइए आपको बताते हैं कि NFDP पर पंजीकरण क्यों जरूरी है। इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण अनिवार्य है क्योंकि यह भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की पहली शर्त है। विशेषकर प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सा योजना और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सरकारी सब्सिडी और अनुदान, इसमें योजनाओं के अंतर्गत परफॉर्मेंस ग्रांट और वित्तीय प्रोत्साहन सीधे प्राप्त करने के लिए डिजिटल पहचान का होना आवश्यक है। अगला है आसान ऋण। संस्थागत ऋण प्राप्त करने और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधाओं का लाभ उठाने में यह मदद करता है। बीमा सुरक्षा, जलीय कृषि बीमा और जोखिम से बचाव की सुविधाओं का लाभ पंजीकरण के बाद ही मिलता है। अगला है बाजार और विपणन। इसके माध्यम से मछुआरों को ई कॉमर्स, B2B मार्केट प्लेस और ई नीलामी तक पहुंच मिलती है, जिससे बेहतर दाम मिलते हैं। इसके बाद आता है प्रशिक्षण और डिजिटल पहचान। कार्य आधारित डिजिटल पहचान, डिजिटल आईडी मिलने से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठाना आसान हो जाता है। श्रोताओं, पंजीकरण कैसे करें? आप NFDP पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपना पंजीकरण कर सकते हैं या अपने नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र CSC की मदद ले सकते। श्रोता मित्रों, अब चलिए आपकी मुलाकात आज हम एक ऐसे वैज्ञानिक से कराने जा रहे हैं जो कि हमें कृत्रिम जैविक खाद तैयार करने की विधि और इसके लाभ के बारे में जानकारी देंगे। तो आइए सुने ये भेंटवार्ता। हमारे आज जो मेहमान है वो है गोंधरा माटी। तो आइए सुने ये भेंटवार्ता।
1: आप हैं श्री गोंधरा माटी वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र पूर्वी सिंहभूम दारीसाई। इनसे हम जानकारी लेंगे कृत्रिम जैविक खाद तैयार करने की विधियों का और उससे लाभ क्या है। गोंधरा जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले तो हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे जैविक खाद क्या है।
2: जैविक खाद जो प्रकृति में हमें मिलता है, जैसे पेड़ से, पौधा से, पशु से, जंतु से, उनका मैल के रूप में या सड़ा गला पदार्थ के रूप में जो हमें मिलता है उसको हम जैविक खाद कहते हैं। जैविक खाद के अंतर्गत केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट, सड़ा गला पदार्थ प्लस जीवाणु खाद आदि आते हैं।
1: जी, कौन कौन सा जैविक खाद है जो किसान हमारे उपयोग करते हैं?
2: किसान जो जैविक खाद के रूप में जो प्रयोग करते हैं वो कंपोस्ट है
1: जी,
2: गोबर है, खल्ली है, उसमें प्रमुख रूप से नीम, करंज, महुआ आदि की खल्ली का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ अभी केचुआ खाद का भी किसान प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ जो जीवाणु खाद है, जैसे राइजोबियम कल्चर है, PSV कल्चर है, ये जो एस्पिरिलम है, ब्लू ग्रीन अलगी है, या फसल चक्र के रूप में जैविक खाद फसल को देते हैं उसका प्रयोग करते हैं।
1: जी, तो जैविक खाद का उपयोग करना ही जैविक खेती है क्या?
2: जी, जैविक खेती में हम जो है मुख्य रूप से केवल जैविक खाद के अलावा दूसरा प्रयोग नहीं करते हैं। जैविक खेती का मूल सिद्धांत ये है कि जो प्रकृति से जो वस्तु हमें मिल रहा उसका सड़ा गला या सड़ने गलने के बाद उसको फिर से जमीन में हमें देना और उससे फसल उगाना, फिर उस फसल को फिर जमीन में ही देना, यानी कि एक चक्र चलाना, और बाहर से उसमें हम कोई रासायनिक पदार्थ या तत्व का प्रयोग नहीं करते हैं।
1: जी, अच्छा माडी साहब, प्रमुख जैविक खाद जैसे केचुआ खाद अच्छा माना जाता है, इसके बनाने की विधि क्या है?
2: किसान जो गोबर का प्रयोग करते हैं, हर एक के घर में गोबर होता है,
1: बिल्कुल,
2: और वो साल में एक बार प्रयोग करते हैं। मुख्यतः जो किसान धान का खेती करते हैं तो साल में एक बार उसको निकालते हैं, लेकिन एक साल होते होते ये गोबर जो है कभी कभी काफ़ी ज़्यादा सड़ा गला हो जाता है, या काफ़ी बार जो है गोइठा जैसा हो जाता है, तो उसका गुण नहीं रहता है।
1: अच्छा,
2: अगर अपने घर में जो गोबर खाद है उस खाद को किसान भाई अगर केचुआ खाद में परिवर्तित करके फसल में या खेत में डालते हैं तो बहुत फायदेमंद है।
1: अच्छा।
2: और केचुआ खाद बनाना बहुत आसान है। केचुआ खाद बनाने के लिए आपके पास सड़ा गला पदार्थ चाहिए, गोबर चाहिए। ऐसा देखा गया है कि 60:40 यानी कि 60 भाग पेड़ पौधा सड़ा गला चीज चाहिए और 40 भाग जो है हमको गोबर चाहिए।
1: अच्छा।
2: और इसमें अगर हम केचुआ के लिए खाना के रूप में देते हैं तो केचुआ हमको गोबर केचुआ खाद तैयार करके देता है। लेकिन केचुआ खाद बनाने के लिए कई एक विधियां हैं।
1: अच्छा।
2: उसमें से प्रमुख रूप से एक सतही विधि होता है जो जमीन के सतह के ऊपर में हम डाल देते हैं, दूसरा गड्ढा विधि यानी कि गड्ढा बना के हम करते हैं। गड्ढा विधि ज़्यादा प्रचलित है। गड्ढा का आकार जो है 3 फीट चौड़ाई, 3 फीट गहराई, लंबाई अपने जरूरत के हिसाब से, लेकिन इसको आप कोई छायादार स्थान में बनाइए, यानी कि पुआल का घर हो या जहाँ पे पानी और धूप नहीं आता हो। और जब हम बेड तैयार करते हैं सबसे नीचे हम जो है फसल का डंठल, जैसे राहड़ का हो सकता है, मकई का हो सकता है, बैगन टमाटर कोई भी फसल का अवशेष,
1: फसलों का डंठल,
2: डंठल
1: पत्तियां, क्या ताजी होनी चाहिए या सूखी?
2: ताजी नहीं, ये सूखी होना चाहिए।
1: अच्छा।
2: और उसको सबसे नीचे हम 2 से 2.5 इंच बिछावन के रूप में बिछाते हैं।
1: जी।
2: इसके ऊपर में 1 फीट गोबर देते हैं।
1: अच्छा।
2: उसमें भी गोबर में जो है सड़ा गला पदार्थ अगर मिला हुआ रहता है तो काफी अच्छा है। 1 फीट के बाद हम 3-4 इंच मोटा जो है गोबर का, ताजा गोबर का, 15-20 दिन पुराना गोबर का घोल डाल देते हैं।
1: अच्छा।
2: इसके ऊपर में फिर और 1 फीट जो है हम गोबर और सड़ा गला पदार्थ डालते हैं, फिर हम जो है गोबर का 3-4 इंच घोल डालते हैं। इस तरह से 3 फीट का गड्ढा को पूरा भरते हैं। भरने के बाद उसको जूट के बोरी से हम ढक देते हैं। जूट के बोरी से इसलिए ढका जाता है कि उसके अंदर का नमी बरकरार रहे। वैसी जो बेड का जो तापमान है ये करीब 20 से 25 डिग्री होना चाहिए और उसमें आर्द्रता नमी जो है 60-70% होना चाहिए, जिसे केचुआ बहुत आसानी से उसमें खा सकता है, पाल सकता है, बढ़ सकता है। और एक चीज ध्यान देने की बात है, जब हम बेड का तैयार कर लिए सप्ताह 10 दिन में एक बार हमको उसको पलटी कर देना चाहिए।
1: अच्छा।
2: क्योंकि केचुआ अपने से उसको उल्टा पलटी नहीं कर
1: सकता है,
2: तो इसीलिए अगर उसमें अगर ठोस हो जाता है, कठोर हो जाता है, तो ऐसा परिस्थिति में आप उसको चलाते रहेंगे तो केचुआ आसानी से खाते रहेगा।
1: तो ये तो आपने बताया जैविक खाद में मुख्यतः केचुआ खाद कैसे बना सकते हैं। अब आप ये बताएं कि ये केचुआ खाद तैयार करने में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
2: केचुआ खाद बनाने के लिए जो सावधानी है वो हमेशा कोई छायादार स्थान में आप बनाइए जहाँ सीधे पानी नहीं गिरता हो,

0: बरसात का पानी नहीं गिरता हो और प्लस उसमें सूरज का रोशनी नहीं आता हो।
1: अच्छा,
0: और दूसरा कि जो है जो प्लास्टिक हुआ या जो कांच हुआ या पत्थर का टुकड़ा हुआ वैसी चीज ना डाले, जो नहीं सड़ता हो।
1: कृत्रिम जैविक खाद तैयार करने की क्या विधि है और उसके क्या लाभ हैं, इस विषय पर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। माड़ी साहब, आपको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: श्रोता मित्रों, अभी चलिए आपको जानकारी देते हैं बाजार भाव के बारे में। कृषि उत्पादन बाजार समिति परसुडी जिला पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के अनुसार बाजार भाव इस प्रकार है। चावल में उसना उत्तम किस्म का भाव रहा 5,800 से 5,890 रुपए प्रति क्विंटल, मध्यम का 3,756 से 3,787 रुपए क्विंटल, अन्य 3,277 से 3,285 रुपए प्रति क्विंटल। आवरा उत्तम किस्म का भाव रहा 5,900 से 6,175, मध्यम का 3,888 से 3,995 और अन्य का 3,476 से 3,588। वहीं दालों में अरहर का भाव रहा 12,290 से लेकर 12,349, मोटा दाल का भाव रहा 8,469 से लेकर 9,455 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं मसूर दाल का भाव रहा 7,987 से लेके 8,998 रुपये। आलू में बड़ा आलू का भाव रहा 680 रुपये से लेके 756 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि गोल दाना आलू का भाव रहा 600 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं सरसों तेल का भाव रहा 2,779 रुपये प्रति टीना, जबकि रिफाइन तेल का भाव रहा 2,335 रुपये प्रति टीना। प्याज का भाव रहा 2,376 से 2,450 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं टमाटर का भाव रहा 5,000 रुपये प्रति क्विंटल। गुड़ का भाव रहा 3,550 से 3,900 रुपये प्रति क्विंटल। श्रोता मित्रों, चलिए अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और आपको सुनाते हैं एक संताली लोकगीत। कलाकार है उमा पोदो मुर्मू व साथ

किसान भाइयों, आइए आपको जानकारी देते हैं मौसम के संदर्भ में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारत मौसम विभाग नई दिल्ली, भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय नई दिल्ली, क्षेत्रीय प्रभाग रांची और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा प्राप्त मौसम के संदर्भ में कहा गया है कि जिला पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और इसके

आसपास के क्षेत्रों में सप्ताह के दौरान आसमान साफ रहेगा, परंतु दोपहर बाद आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सुबह के समय और दोपहर बाद हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज बिजली और 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान 38 से 44 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 22 से 26 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। इस दौरान पूर्वाह्न 7:21 को सापेक्षिक आर्द्रता 83 से 100 तथा दोपहर बाद अपराह्न 2:21 को 31 से 49% दर्ज की जा सकती है। सप्ताह के दौरान दिन में औसत 11.5 घंटे प्रतिदिन धूप खिली रहेगी। हवा की औसत गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे तथा वाष्पीकरण की औसत दर 3.6 मिलीमीटर प्रतिदिन रहेगी। सप्ताह के दौरान पूर्वाह्न को हवा शांत रहेगी तथा अपराह्न को उत्तर पश्चिम दिशाओं से बहने की उम्मीद है। मौसम संबंधी

किसान भाइयों, अब चलते चलते आइए आपको कुछ जरूरी बातें बताते हैं। सबसे पहला तो है, मिट्टी की जांच क्यों कराएं या आवश्यक क्यों है? मिट्टी की जांच कृषि के लिए सर्वोपरि है। यह खेत में मौजूद पोषक तत्वों, पीएच मान और नमी की सटीक जानकारी देती है, जिससे फसल की पैदावार बढ़ती है और अनावश्यक उर्वरकों पर होने वाला खर्च बचता है। बिना जांच के खेती करने से मिट्टी की उर्वरता को नुकसान पहुंचता है। मिट्टी की जांच जरूरी क्यों है? सबसे पहला है उर्वरक प्रबंधन। यह बताता है कि किस खाद या पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की कमी या अधिकता है। अगला है लागत में कमी। जरूरत के अनुसार ही उर्वरक डाले जाते हैं, जिससे किसानों का फालतू खर्च बचता है। अगला है भूमि सुधार। खेत की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का पता चलता है, जिसे सुधार को जैसे चूना या जिप्सम द्वारा ठीक किया जा सकता है। जांच के लिए मिट्टी का नमूना कैसे लें? सबसे पहले तो स्थान खेत के कम से कम 5 से 8 अलग अलग हिस्सों से भी आकार का गड्ढा खोदकर मिट्टी इकट्ठा करें। इसमें सावधानी मेड़, पेड़ों की छांव या खाद के ढेर के पास से नमूना ना लें। मात्रा में देखा जाए तो सभी जगहों से ली गई मिट्टी यानी कि आधा किलो को अच्छी तरह से मिलाकर एक साफ पॉलिथीन या कपड़े के बैग में भरें। इसके बाद इसका विवरण बैग पर किसान का नाम, खेत का नंबर और पिछली अगली फसल का नाम जरूर लिखें। आइए जानें कि मिट्टी की जांच कैसे करवाएं। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि केवीके या राज्य कृषि विभाग की प्रयोगशाला में मिट्टी का नमूना जांच के लिए भेज सकते हैं। इसके आधार पर आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाता है। यदि आप मिट्टी की जांच की प्रक्रिया और इससे जुड़ी योजनाओं के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृषि विभाग झारखंड की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। श्रोता मित्रों, अब अंत में कुछ स्वास्थ्य की बातें। तेज गर्मी से रक्तचाप की समस्या और सावधानी के बारे में आपको बताते हैं। तेज गर्मी में शरीर का तापमान नियंत्रित रखने के लिए हृदय को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है, जिससे रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर में अचानक उतार चढ़ाव, चक्कर आना या डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। गर्मी में रक्तचाप को सामान्य रखने के लिए क्या क्या सावधानी अपनाना है? सबसे पहला तो खान पान और हाइड्रेशन। पर्याप्त पानी पीना, दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिएं। प्यास न लगने पर भी थोड़े थोड़े अंतराल में आप पानी पी सकते हैं। श्रोता मित्रों, तब इसी के साथ ही हमारा आज का ये कृषि जगत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अपने रेडियो दोस्त सुरेंद्र टूडू को आज्ञा दीजिए। सभी को मेरा प्यार भरा जोहार।

दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत अभी आपने सुना। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 6:55 हुए हैं। अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त

0: बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। कांग्रेस झामुमो और राजद ने तेज की रणनीतिक बैठकें। 6 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रांची दौरा प्रस्तावित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की श्रम एवं नियोजन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा। युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के दिए निर्देश। पलामू के राजहरा स्टेशन पर कोयला लदी मालगाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से उतरे। अपलाइन पर परिचालन पूरी तरह ठप, कई ट्रेनें रद्द, कईयों के मार्ग बदले। दक्षिण पश्चिमी मानसून बंगाल की खाड़ी पहुंचा। 15 जून तक झारखंड में दस्तक देने की उम्मीद। पाकुड़ में आंधी बारिश से भारी तबाही। और 15वीं राष्ट्रीय बाइथल ट्राइथल चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। स्वर्ण समेत 5 पदक जीतकर बढ़ाया राज्य का मान। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। उम्मीदवारों के चयन और चुनावी रणनीति को लेकर इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दलों कांग्रेस झामुमो और राजद ने अपनी सांगठनिक बैठकें तेज कर दी हैं। रांची के पुराने विधानसभा सभागार में आज संगठन विस्तार को लेकर कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने बैठक में देरी से आने वाले पदाधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जताई और अनुशासन बनाए रखने की हिदायत दी। राज्यसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों और गठबंधन की रणनीति को लेकर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह गंभीर है।
1: हमारा हाईकमांड बात कर रहे हैं, आरजेडी और लेफ्ट से बात कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर हमारा हाईकमांड को बताएंगे। अभी तक क्लैरिटी नहीं है, अभी तक वो ऐसा अश्योरेंस नहीं आया। हमारा अश्योरेंस ये है एक सीट में हम लड़ेंगे, सो हम वेट कर रहे हैं।
0: इस बीच झामुमो नेता और मंत्री सुदिव्य कुमार ने गठबंधन के भीतर किसी भी तरह के मतभेद से इनकार करते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव के नामांकन में अभी काफी समय है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल पूरी तरह एकजुट हैं और सही समय पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए जाएंगे।
2: सारे राजनीतिक दल सारी गोटियों पर संभावनाओं पर सारे मूल्यांकनों को करके यह तय करते हैं कि किसको कैंडिडेट देना चाहिए, किसको लड़ाया जाना चाहिए और उनका समय उनको दिया जाना चाहिए। 8 तारीख में भी समय बाकी है, तमाम चीजें होंगी, ससमय होंगी और हम ये उम्मीद करते हैं कि इंडिया गठबंधन झारखंड की दोनों ही सीटें लेकर जाए।
0: इधर रांची स्थित राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के बाद मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा है कि राज्य भर में संगठन को मजबूत करने के लिए जिलावार दौरे की रणनीति तैयार की गई है।
3: पूरे राज्य का हम लोग का दौरा चल रहा है अगले महीना से। अध्यक्ष जी के माध्यम से पार्टी का राय मशवरा हुआ, उन्होंने तीनों विधायक को भी डायरेक्शन दिया। लोग अब पूरा राज्य में भ्रमण कैसे करें, अपने लोगों को संगठन को कैसे मजबूती से आगे बढ़ाएं, उसके विषय में डायरेक्शन दिया।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आगामी 6 जून के रांची दौरे के आगमन को लेकर प्रदेश भाजपा तैयारियों में जुट गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने कहा कि इस दौरे से राज्य में पार्टी के आगामी अभियानों और सांगठनिक विस्तार को नई मजबूती मिलेगी।
4: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का 6 और 7 को रांची में आगमन हो रहा है और विशुद्ध रूप से वो झारखंड को बहुत बारीकी से जानते हैं। इस क्षेत्र में लगातार उनका संपर्क, चुनाव के समय में भी इनका यहाँ पर आकर के चुनावी काम में सहयोग करना रहा है और एक एक कार्यकर्ता को पहचानते हैं, यहाँ के पार्टी के संगठन को भी बहुत वास्तविकता से जानते हैं।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में चल रही रोजगार उन्मुखी योजनाओं और युवाओं के तकनीकी प्रशिक्षण के कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा की। श्री सोरेन ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि कौशल विकास कार्यक्रमों को आधुनिक बाजार की मांग के अनुरूप बनाया जाए। लातेहार के मनिका में भारी मात्रा में सरकारी दवाइयां फेंके जाने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ गरीब मरीज अस्पतालों में दवाइयों के लिए भटक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जनता के टैक्स के पैसे से खरीदी गई लाखों रुपए की दवाइयां जंगलों में फेंकी जा रही है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लोहरदगा में सांसद सुखदेव भगत की अध्यक्षता में आज दिशा की बैठक हुई। उन्होंने जनवितरण दुकानों में पूरा अनाज देने, सदर अस्पताल में डिजिटल बीपी व एक्सरे मशीन लगाने और सीएचसी में दवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सांसद ने सड़कों की गुणवत्ता और प्रभावितों को शुद्ध पेयजल देने को भी कहा। धनबाद रेल मंडल के राजहरा स्टेशन के पास कोयला लदी मालगाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे से अपलाइन पर परिचालन ठप है। इसके कारण रांची सासाराम एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है और राजधानी सहित कई ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं। ट्रैक साफ करने का कार्य जारी है। मालदा मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक अमरिंद्र कुमार मौर्य ने आज गुड्डा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि यहां बन रहा वॉशिंग पिट एक महीने में पूरा हो जाएगा, जिससे गुड्डा से लंबी दूरी की नई ट्रेनों का परिचालन शुरू हो सकेगा।
5: कोचिंग मेंटेनेंस के लिए काम तो काफी प्रगति पर है, कुछ काम उसमें रह गया है, तो आई होप कि एक महीने में फिट बन जाएगा। और ये डिपो के ऑफिस वगैरह भी रेडी हो जाएंगे, इसमें भी छोटे मोटे काम रह गए हैं। इलेक्ट्रिकल के दो ट्रेन जो यहाँ से चलती है मेंटेनेंस के लिए भागलपुर जाती है, वो दोनों ट्रेन का मेंटेनेंस हम यहाँ स्टार्ट कर देंगे।
0: और अब मौसम का हाल। दक्षिणी पश्चिम मॉनसून बंगाल की खाड़ी पहुँच चुका है, जिसके बाद 15 जून तक झारखंड आने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य में 8 जून तक वज्रपात और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में डाल्टनगंज का तापमान सर्वाधिक 41 डिग्री रहा, जबकि गुमला में सबसे अधिक 9.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इधर पाकुड़ जिले में आज तेज आंधी और ओलावृष्टि के साथ हुई तेज बारिश ने भारी तबाही मचाई है। आंधी के कारण मालपहाड़ी रोड समेत कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे यातायात घंटों बाधित रहा। आपदा में कई कच्चे मकाने की छत उड़ गई और पेड़ गिरने से एक व्यक्ति घायल हो गया। तेज आंधी और बारिश के दौरान हुए वज्रपात से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। अहमदाबाद में आयोजित 15वीं राष्ट्रीय बाइथल ट्राइथल चैंपियनशिप 2026 में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। प्रतियोगिता के बाइथल स्पर्धा में प्रेम किशोर महतो ने स्वर्ण पदक जीता, वहीं दीपांशु सिंह और अतासी कुमार ने कांस्य पदक हासिल किए। ट्राइथल स्पर्धा में आरती कच्छप ने रजत और प्रेम किशोर महतो ने कांस्य पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया। झारखंड महिला प्रीमियर लीग में पलामू वॉरियर्स ने छोटा नागपुर ब्लास्टर्स को 3 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए छोटा नागपुर ब्लास्टर्स ने कप्तान शशि माथुर के 35 रनों की मदद से 145 रन बनाए। जवाब में पलामू वॉरियर्स ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 18.4 ओवरों में 7 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। कांग्रेस, झामुमो और राजद ने तेज की रणनीतिक बैठकें। 6 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रांची दौरा प्रस्तावित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की श्रम एवं नियोजन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा। युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के दिए निर्देश। पलामू के राजहरा स्टेशन पर कोयला लदी मालगाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से उतरे। अपलाइन पर परिचालन पूरी तरह ठप, कई ट्रेनें रद्द, कईयों के मार्ग बदले। दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून बंगाल की खाड़ी पहुंचा, 15 जून तक झारखंड में दस्तक देने की उम्मीद। पाकुड़ में आंधी बारिश से भारी तबाही। और 15वीं राष्ट्रीय बाइथल ट्राइथल चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। स्वर्ण समेत 5 पदक जीतकर बढ़ाया राज्य का मान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: इस अंक में आप सुनेंगे दुमका जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे दुमका संवाददाता।
1: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने दुमका परिसदन में दुमका और जामताड़ा जिले में अनुसूचित जनजाति के विकास और कल्याण के लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं तथा उनसे जुड़ी शिकायतों एवं समस्याओं पर जनसुनवाई की। जनसुनवाई में जामताड़ा के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के नहीं पहुँचने पर उन्होंने गंभीर नाराजगी जताई और कहा कि दोनों के खिलाफ सम्मन जारी कर उन्हें दिल्ली बुलाया जाएगा। दरअसल अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य के नाते आशा लकड़ा को जामताड़ा के लोगों से यह शिकायत मिली थी कि उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। लोगों ने जमीन खाली कराने की मांग की थी।
2: जामताड़ा के लोगों से हम एक विश्वास के साथ जनजाति समुदाय आयोग की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उनको विश्वास है कि आयोग न्याय देगी, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि आयोग का नोटिस आने के बाद भी जामताड़ा का डीसी और एसपी उपस्थित नहीं हुए। ये बहुत विडंबना है। आयोग उन पर समन करेगी और दिल्ली बुलाएगी और जामताड़ा का जनजाति समुदाय को न्याय देने का काम करेगी, क्योंकि जामताड़ा में जिस जगह पर जो आदिवासी समुदाय का जहर थान है, पूजा स्थल है, उस जगह पर आज भी मुस्लिम समुदाय के लोग अपना कब्रस्थान बना रहे हैं और उस कब्रस्थान में काम चल रहा है। इसको रोकने का प्रयास करने के लिए भी पिछले बार हमने कहा था, थोड़ी देर के लिए रोक दिया था, लेकिन पुनः फिर से वहाँ व्यक्ति दफनाया जा रहा है।
1: दुमका जिले में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। युवा विभिन्न ट्रेड में निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर हुनरमंद बन रहे हैं और अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। योजना के कार्यान्वयन से जुड़े कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर के संचालक ब्रजेश भारती बताते हैं कि
3: बच्चों को यहाँ पे कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो 120 दिनों का प्रत्येक दिन 3 घंटे का प्रशिक्षण होता है और इसमें बच्चों को हम लोग असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसको करने के बाद बच्चों के पास स्किल इंडिया का तो सर्टिफिकेट होगा ही और कंप्यूटर का ज्ञान लेने के बाद वो किसी भी क्षेत्र में जाकर अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं।
1: दुमका जिले में आदिवासी समाज की उच्च और तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवतियां जनजातीय समाज की महिलाओं के जीवन स्तर और उनकी आर्थिक दशा में बदलाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की महत्वपूर्ण कड़ी बन रही हैं। कंप्यूटर में उच्च शिक्षा प्राप्त सोनाली सोरेन कहती हैं कि
4: तो यहाँ पे जितनी भी आदिवासी महिला है या फिर गाँव सुदूर क्षेत्र में, उनको आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये लोग बहुत ही संकोची और सीधे भोलापन के निशान, ये लोग निशानी होते हैं और ये लोग तुरंत से कुछ भी आगे नहीं जाना चाहते हैं। और मेरा ये मोटिव है कि मैं इन लोगों को आगे लेकर जाऊं और हमारे जनजातीय कौशल केंद्र के द्वारा जितनी भी ट्रेनिंग कराया जा रहा है वो लोग उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले।
1: दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकी नाथ धाम श्रावणी मेला महोत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। मेले में आने वाले कांवरियों को सेवा, सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध कराने के प्रति प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आर के नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका।
0: अभी आप सुन रहे थे दुमका जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। इस समय शाम के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है बांग्ला कार्यक्रम।

बांग्ला कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। इस समय शाम के 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है साप्ताहिक खेल पत्रिका खेल खिलाड़ी।

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ दीपिका जसवाल और आज मेरे साथ हैं,
2: मैं हूं विजेता चतुर्वेदी। नमस्कार सभी श्रोताओं को।
1: और आज क्या है खास, सबसे पहले वो जान लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और उस पर हर रोज हम एक सीरीज आपको सुनवाते हैं जिसमें फीफा वर्ल्ड कप में जो ग्रुप्स हैं उनकी टीम्स के बारे में बताया जाता है। तो आज ग्रुप डी की बात होगी और उसके अलावा फुटबॉल की ही बात को आगे बढ़ाते हुए सैफ वुमेन्स चैंपियनशिप की बात होगी जिसमें सेमीफाइनल और फाइनल का पूर्वावलोकन आप सुनेंगे। इसके अलावा बैडमिंटन में इंडोनेशियन ओपन, टेनिस में फ्रेंच ओपन और हॉकी की अंडर 18 एशिया कप के बारे में आप जानेंगे आज मेन्स एंड वुमेन्स के सेमीफाइनल्स के बारे में। उलान बटलर ओपन रेसलिंग रैंकिंग सीरीज का आयोजन आज से शुरू हुआ है उसके बारे में भी जानेंगे और फर्स्ट वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप जो अहमदाबाद में आयोजित की गई है आज उसका पहला दिन है उसके बारे में भी आप कार्यक्रम में जानेंगे और चर्चा करेंगे। चेस की बात करेंगे, राउंड 9 के या प्रीव्यू और करंट रेटिंग्स के बारे में जानेंगे, WTT कंटेंडर के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ एशियन रिलेज चैंपियनशिप के लिए भारतीय दल की जो घोषणा हुई और उसमें कौन कौन से हमारे एथलीट्स जा रहे हैं उसके बारे में भी हम आज

फुटबॉल का जाना माना वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप और बेहद चर्चित बेहद लोकप्रिय वर्ल्ड कप और ये वर्ल्ड कप जब होता है तो फुटबॉल फैंस जो है बिल्कुल इस वर्ल्ड कप की अपडेट्स, वर्ल्ड कप के ग्रुप्स, वर्ल्ड कप में क्या क्या चल रहा है उसके बारे में जानने के उत्सुक रहते हैं। और फीफा वर्ल्ड कप सीरीज 4 में आज हम ग्रुप डी के बारे में आइए सुनते हैं।

फुटबॉल प्रेमियों का सबसे बड़ा त्योहार फीफा वर्ल्ड कप 2026 बस शुरू होने ही वाला है। इस बार मुकाबला 32 नहीं बल्कि 48 टीमों के बीच है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रुप की जिसे ग्रुप ऑफ प्रेडिक्शंस कहा जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रुप डी की, जिसमें शामिल हैं सह मेजबान यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, पैराग्वे और तुर्की। कोई एक टीम इस ग्रुप पर राज करेगी या हमें उलटफेर देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं सह मेजबान यूएसए की। मॉरिशियो पोचेटिनो की कोचिंग में खेल रहे यूएसए की टीम के पास होम सपोर्ट का सबसे बड़ा फायदा है। आंकड़ों की माने तो यूएसए के नॉकआउट स्टेज में पहुंचने की उम्मीदें ज्यादा हैं। मेजबान होने के नाते अमेरिका पर घरेलू दर्शकों की उम्मीदों का भारी दबाव भी रहेगा। अमेरिकी टीम पिछले कई विश्व कपों में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है और युवा खिलाड़ियों के साथ साथ अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण रखती हैं। तेज आक्रमण, ऊर्जावान मिडफील्ड और घरेलू मैदान का फायदा अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है। फुटबॉल विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाता है तो वो इस समूह में शीर्ष स्थान हासिल कर सकता है। और इनके सामने खड़ा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने मजबूत डिफेंस और कभी न हार मानने वाले जज्बे के लिए जानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया लगातार 7वें विश्व कप में भाग ले रहा है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी आखिरी मिनट तक संघर्ष करने की क्षमता भी रखते हैं। पिछले विश्व कपों में भी उन्होंने मजबूत टीमों को कड़ी टक्कर दी थी। इस बार उनका लक्ष्य कम से कम नॉकआउट चरण तक पहुंचना होगा। पिछले वर्ल्ड कप में उन्होंने राउंड ऑफ 16 तक का सफर तय किया था और इस बार भी वे तुर्की और पैराग्वे जैसी टीमों का गणित बिगाड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पावर हाउस पैराग्वे की। कठिन कॉमन बोल क्वालिफायर पार करके आई ये टीम शारीरिक रूप से बहुत मजबूत है और इन्हें कम आंकना किसी भी टीम के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। तीसरी टीम है लंबे अंतराल के बाद विश्व कप में वापसी कर रही है। पैराग्वे की टीम दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल की पारंपरिक ताकत मानी जाती है। उनकी पहचान मजबूत डिफेंस, शारीरिक खेल और काउंटर अटैक से होती है। विश्व कप 2010 में पैराग्वे क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा था और इस बार भी टीम उसी तरह का प्रभाव छोड़ना चाहेगी। यदि उनके प्रमुख खिलाड़ी फॉर्म में रहे तो वो किसी भी प्रतिद्वंदी को परेशान कर सकते हैं। और इस ग्रुप का सबसे बड़ा एक्स

फैक्टर है तुर्की। साल 2022 में तुर्की की टीम लंबे समय बाद वर्ल्ड कप के बड़े मंच पर लौटी है और इनके पास युवाओं का जोश और यूरोपियन लीग का बेहतरीन अनुभव है, जो इन्हें ग्रुप में पहले या दूसरे नंबर पर फिनिश करने का मजबूत दावेदार बनाता है। फुटबॉल प्रशंसकों को याद होगा कि 2002 विश्व कप में तुर्की ने तीसरा स्थान हासिल कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इस बार भी टीम के पास तकनीकी रूप से मजबूत खिलाड़ी हैं, जो तेज और आक्रामक फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तुर्की को इस समूह का डार्क हॉर्स भी माना जा रहा है। चलिए नजर डालते हैं इस ग्रुप के सबसे बड़े मुकाबलों पर। 12 जून भारतीय समय अनुसार 13 जून ग्रुप की शुरुआत होगी यूएसए बनाम पराग्वे के ब्लॉकबस्टर मैच से, जो इंगलवुड लॉस एंजलिस में खेला जाएगा। वहीं 13 जून भारतीय समय अनुसार 14 जून ऑस्ट्रेलिया का सामना होगा तुर्की से वैंकूवर कनाडा में। इस ग्रुप में हर एक पॉइंट के लिए कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि यहां से टॉप टू टीमें सीधे आगे जाएंगी। लेकिन किस्मत अच्छी रही तो तीसरे नंबर की टीम को भी मौका मिल सकता है।

फुटबॉल की बात को ही आगे बढ़ाते हैं और सैफ वुमेन्स चैंपियनशिप की बात करते हैं, जिसमें भारत पहुंच चुका है फाइनल में। लेकिन सबसे पहले सेमीफाइनल कैसा रहा उसके बारे में जानते हैं। भारत का सेमीफाइनल मुकाबला भूटान से हुआ और भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने इस चैंपियनशिप के फाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। मुकाबला गोवा के मडगांव स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला गया और भारत की ओर से मैच का एकमात्र गोल सनफिदा नॉनगुरम ने 58वें मिनट में किया। मुकाबला काफी संघर्षपूर्ण रहा और भारत ने भूटान को कड़ी टक्कर दी। भारत ने पूरे मैच में गेंद पर अपना नियंत्रण रखा। भूटान की मजबूत डिफेंस लाइन को तोड़ने में भारतीय टीम को काफी मेहनत करनी पड़ी। मनीषा कल्याण की वापसी से भारतीय अटैक को मजबूती मिली है और गोल कीपिंग और डिफेंस में भारत ने संयमित खेल दिखाया। भूटान भले ही मैच हार गया लेकिन टीम ने शानदार जुझारूपन दिखाया, खासकर उनकी डिफेंस और काउंटर अटैक रणनीति ने भारत को लंबे समय तक रोके रखा। फॉरवर्ड पेमा टेस्टरिंग लगातार भारतीय डिफेंस के लिए खतरा बनी रही और 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम अब 6 साल बाद सैफ वुमेन्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है और रिकॉर्ड 6ठा खिताब जीतने की दावेदार मानी जा रही है। भारत में इस टूर्नामेंट के सफर की अगर बात करें तो भारत ने मालदीव्स को 11-0 से हराया था। बांग्लादेश से एक मुकाबला हो चुका है पहला, जो 3-0 से भारत ने जीता था, और सेमीफाइनल मुकाबला जो भारत का भूटान के साथ था वो 1-0 से भारत ने अपने नाम किया था। वहीं बांग्लादेश भी कम नहीं है, बांग्लादेश को भी अब जो मुकाबला होना है बांग्लादेश के साथ उसको भी हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि बांग्लादेश भी चैंपियन टीम है। दक्षिण एशियाई महिला फुटबॉल की 2 सबसे बड़ी टीमें हैं भारत और बांग्लादेश, और एक बार फिर खिताबी मुकाबले में आमने सामने होने जा रही हैं। और यह सिर्फ एक फाइनल नहीं बल्कि दक्षिण एशियाई महिला फुटबॉल की नई प्रतिद्वंदिता का सबसे बड़ा अध्याय है। भारत रिकॉर्ड 6ठा खिताब जीतना चाहेगा और बांग्लादेश लगातार 3रा सैफ खिताब जीतने उतरेगा। दोनों टीमें टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में हैं और अगर भारत की ताकत की बात करें तो इंडिया वुमेन्स नेशनल फुटबॉल टीम इस टूर्नामेंट में शानदार लय में दिखी है और आक्रमण में प्यारी साक्षा, मनीषा कल्याण और लिंडा कॉम लगातार खतरा पैदा कर रही हैं। मिडफील्ड में संगीता बोस टीम की गति नियंत्रित कर रही हैं और सेमीफाइनल में भारत ने मजबूत प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई है। वहीं बांग्लादेश की अगर चुनौती की बात करें तो बांग्लादेश वुमेन्स नेशनल फुटबॉल टीम ने नेपाल को हराकर फाइनल में प्रवेश किया और टीम का आत्मविश्वास काफी ऊंचा रहा। कप्तान सबीना खातून अनुभव का बड़ा स्तंभ है और युवा स्टार सागोरिका ने सेमीफाइनल में निर्णायक गोल कर टीम को जीत दिलाई थी। रणनीति क्या हो सकती है भारत की? भारत तेज पासिंग और विंग अटैक के जरिए शुरुआती बढ़त लेने की कोशिश करेगा और बांग्लादेश काउंटर अटैक और सेट पीसेस पर भरोसा करेगा। मिडफील्ड की लड़ाई मैच का परिणाम तय कर सकती है और ये जो है फाइनल मुकाबला होना है 5 जून को शाम 6:30।

0: सैफ वुमेन्स चैंपियनशिप का मुकाबला 5 जून नहीं बल्कि 6 जून को शाम 6:30 बजे है। और अब आगे की खबर के लिए चलते हैं विजेता के पास।
1: जी हाँ, अब बात होगी अंडर 18 एशिया हॉकी कप की। 5 जून यानी कल का दिन 2026 भारतीय हॉकी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने वाला है। जापान के काको मिगार में चल रहे अंडर 18 एशिया कप में एक तरफ हमारी शेरनिया मैदान में उतरेंगी तो दूसरी तरफ होगा हॉकी का सबसे बड़ा महामुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान। सबसे पहले बात करते हैं उस मुकाबले की जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, मेंस सेमीफाइनल। भारत के सामने है हमारे चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान। मैदान पर जब ये दो टीमें होती हैं तो वो सिर्फ खेल नहीं होता बल्कि वो होते हैं जज्बात। टूर्नामेंट में अब तक भारत का सफर शानदार रहा। पिछले मैच में चीनी ताइपे को 13-1 से रौंद कर हमारे लड़के सेमीफाइनल में दाखिल हुए। आशीष तनीपूर्ति की हैट्रिक और कप्तान केतन कुशवाहा की लीडरशिप ने बता दिया कि हम रुकने वाले नहीं हैं, लेकिन सावधान रहना होगा क्योंकि पाकिस्तान भी कम नहीं। वो पूल बी में टॉप पर रहकर आ रहे हैं और उन्होंने बांग्लादेश को 5-2 से हराया है। उनके अब्दुल्ला अवान और अदील बेहतरीन फॉर्म में हैं। 5 जून को होने वाली ये भिड़ंत कांटे की होगी। क्या हमारे डिफेंस लाइन उनके हमलों को रोक पाएगी? क्या हम एक बार फिर से तिरंगा लहरा पाएंगे? अब चलते हैं, बात करते हैं बेटियों की जिन्होंने इस टूर्नामेंट में तहलका मचा रखा है। हम बात कर रहे हैं विमेंस सेमीफाइनल की। भारत भिड़ेगा चीन से और हैरान कर देने वाले आंकड़े आए पिछले मैच में जहां हमारी लड़कियों ने सिंगापुर को 25-0 से हराया। जी हां, 25-0। पूल बी में हमने मलेशिया और कोरिया को भी धूल चटा दी। नौशीन नाज और गीताश्री की हॉकी स्टिक से तो जैसे आग निकल रही थी। सामने चीन है जो अपने घर के पास खेल रहा है और पूल बी में दूसरे नंबर पे आया है। चीन की दीवार मजबूत है लेकिन हमारी शेरनियों के हौसले उससे कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। अगर हमने ये जीत ली तो हम न सिर्फ फाइनल में जाएंगे बल्कि एशियन हॉकी में अपनी बादशाहत भी साबित कर देंगे।
0: बात कर लेते हैं बैडमिंटन की। इंडोनेशियन ओपन बैडमिंटन 2026 2 जून से 7 जून के बीच जकार्ता में इसका आयोजन किया गया है और इस वक्त राउंड ऑफ 16 के मुकाबले खेले जा रहे हैं जिसमें एमआर अर्जुन और हरिहरन आमस्करुनन की जोड़ी पहली बार सुपर 1000 क्वार्टर फाइनल में है। वर्ल्ड रैंकिंग 30 एमआर अर्जुन और हरिहरन की जोड़ी ने पहली बार सुपर 1000 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है और भारतीय जोड़ी ने वर्ल्ड रैंकिंग 23 और रोनताई और कांग खाई शिंग को 16-21, 21-15, 21-19 से हराया। पहला गेम 16-21 से हारने के बाद अर्जुन और हरिहरन ने शानदार वापसी की और दूसरा गेम 21-15 से जीता और निर्णायक गेम 21-19 से अपने नाम किया और क्वार्टर फाइनल मुकाबला अब अर्जुन हरिहरन का गोह सजे फेई और नूर इजहुद्दीन से है। और वहीं एक अन्य मुकाबला भी आज शाम होना है जो आर कपूर और आर एस गेदे के जोड़ी का मुकाबला है फ्रांस की टी गिल्क्वेल और डी डेलुरे के बीच में। तो ये भी राउंड ऑफ 16 का मुकाबला है। देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह का प्रदर्शन रहता है और हमारे खिलाड़ी क्या कमाल दिखाते हैं।
1: और चलिए श्रोताओं, आपको लिए चलते हैं चेस अरीना में। नॉर्वे शतरंज 2026 का 13वां संस्करण इस बार ओस्लो में खेला जा रहा है। 3 जून को टूर्नामेंट का दूसरा विश्राम दिन था और आज यानी कि 4 जून को राउंड 9 के बेहद रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे। राउंड 8 में भारत के आर प्रज्ञानन द्वारा दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैक्सन कार्लसन को क्लासिकल मुकाबले में हराने के बाद इस टूर्नामेंट की खिताबी जंग बेहद दिलचस्प हो गई है। मौजूदा रैंकिंग और अंक तालिका नॉर्वे शतरंज की अनोखी अंक प्रणाली के तहत क्लासिकल जीत के लिए 3 अंक, आर्मागेडन टाई ब्रेक जीत के लिए 1.5 अंक और आर्मागेडन हार के लिए 1 अंक मिलता है। अगर बात करें अपने खिलाड़ियों की तो आर प्रज्ञानंदा भारत के

12 अंक हैं उनके, और कार्लसन को हरा कर उन्होंने इस खिताबी रेस में वापसी की। वहीं भारत के डी गुकेश 8 अंक के साथ 8वें स्थान पर हैं। विश्व चैंपियन वर्तमान में सबसे निचले स्थान पर वो हैं। और वहीं बात करें, शीर्ष पर रहने वाले हैं वेस्ली सो, जो कि अमेरिका के हैं। शीर्ष पर बहुत ही मजबूत बढ़त उन्होंने बना रखी है, 14 अंक हैं उनके। वहीं अलीरेजा फिरोजा फ्रांस के 13 अंक के साथ लीडर से सिर्फ 1 अंक पीछे हैं। विसेंट कीमर जर्मनी के 4थे स्थान पर टिके हुए हैं, और मैक्सन कार्लसन नॉर्वे के इस टूर्नामेंट में 4 क्लासिकल का हार झेल चुके हैं। वहीं बात करें महिला सेक्शंस की, तो दिव्या देशमुख 3रे स्थान पर हैं, जिन्होंने चीनी खिलाड़ी के साथ अपना संयुक्त 3रा स्थान सुरक्षित किया है और इनके अंक 10 हैं। वहीं बात करें हमारी दूसरी खिलाड़ी, भारत की दूसरी खिलाड़ी कोनरू हम्पी की, तो वो 8 अंक के साथ आखिर स्थान पर हैं। साथ ही बिबिसारा असाउबियेवा कजाकिस्तान की 15.5 अंक के साथ खिताब जीतने के बेहद करीब हैं। दूसरे स्थान पर अपना स्थान बना चुकी हैं यूक्रेन की अन्ना मुस्चुक, और झू जिनर चाइना से आती हैं, गणितीय रूप से अभी भी रेस में शामिल हैं, जिनके अंक हैं 10, और जू वेनजून चाइना से हैं, जिनका अंक है 9, और वो 5वें स्थान पर खिसक गई हैं। टूर्नामेंट में अब केवल 2 राउंड शेष हैं। आज होने वाले 9वें राउंड में हर एक चाल खिताबी विजेता का फैसला कर सकती है। अंक तालिका में 14 अंकों के साथ वेस्ली सो शीर्ष पर हैं। राउंड 9 में उन्हें अपनी बढ़त कायम रखने के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना होगा, क्योंकि फिरोजा और प्रज्ञानंद, जिसमें फिरोजा 1 पर और प्रज्ञानंद 2 अंक के अंतर से ठीक उनके पीछे खड़े हैं। मैक्सन कार्लसन पर भी सीजन की अपनी दूसरी क्लासिकल जीत दर्ज करने के बाद प्रज्ञानंद का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। वेस्ली सो को पछाड़ने के लिए उन्हें राउंड 9 में एक और बड़ी क्लासिकल जीत की तलाश रहेगी, जहां उन्हें 3 अंक लेने होंगे। विश्व चैंपियन गुकेश और कार्लसन की साख की लड़ाई ये है, क्योंकि यहां पर टूर्नामेंट कार्लसन के 9 अंक हैं, गुकेश के 8 अंक हैं। दोनों के लिए ये बेहद निराशाजनक रहा है। राउंड 9 में ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी बिना किसी दबाव के अपनी खोई हुई लय हासिल करने और अपनी रैंकिंग सुधारने के इरादे से उतरेंगे। वहीं अगर बात की जाए महिला सेक्शन की, तो कजाकिस्तान की बिबिसारा 15 अंक से दूसरे स्थान पर हैं, पहले स्थान पर हैं, और दूसरे स्थान पर मौजूदा अन्ना मुस्चुक से पूरे 5 अंक आगे हैं। अगर राउंड 9 में अपनी बाजी ड्रॉ भी कर लेती हैं या आर्मोगोरन जीतती हैं, तो भी अंतिम राउंड से पहले ही खिताब पर अपना कब्जा लगभग पक्का कर लेंगी। भारत की दिव्या देशमुख भी शीर्ष 3 में अपनी जगह मजबूत करने के लिए पूरा जोर लगाएंगी। तो देखते हैं राउंड 9 के सभी क्लासिकल मुकाबले, जो कि आज होने हैं भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे, क्या होता है और कहां पहुंचते हैं हमारे भारतीय खिलाड़ी।

अब बात कर लेते हैं फ्रेंच ओपन की, जिसे रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट में से एक है। यह साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है और इसकी पहचान इसकी धीमी लाल मिट्टी के लिए होती है, जहां खिलाड़ियों की फिटनेस, धैर्य और लंबी रैलियों की असली परीक्षा होती है। यह टूर्नामेंट पेरिस के प्रसिद्ध स्टेड रोलैंड गैरोस में आयोजित किया जा रहा है और 2026 संस्करण 18 मई से 7 जून तक खेला जा रहा है, जबकि मुख्य ड्रॉ मुकाबले 24 मई से शुरू हो चुके हैं। लेकिन अब क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स के मुकाबलों की अगर हम बात करें तो फ्रेंच ओपन 2026 में इटली के युवा टेनिस खिलाड़ी फ्लेवियो कोबोलो ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने करियर में पहली बार मेजर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। 24 वर्षीय कोबोली ने पुरुष सिंगल क्वार्टर फाइनल में कनाडा के फेलिक्स ऑगर अलिसामे को 4-6, 6-4, 6-4 से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई और इस जीत का असर विश्व रैंकिंग पर भी पड़ा। टूर्नामेंट की शुरुआत में वह दुनिया के 14 नंबर के खिलाड़ी थे, लेकिन अब लाइव रैंकिंग में 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं और जो उनके करियर की अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। और अब अगर बाकी परिणाम उनके पक्ष में रहते हैं तो वह पहली बार आधिकारिक तौर पर टॉप 10 खिलाड़ियों में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा अन्य हुए क्वार्टर फाइनल्स की अगर बात करें तो एम बरितनी और उनके हमवतन अर्नाली का मुकाबला हुआ, जिसमें अर्नाली को

0: वॉकओवर मिला और एक अन्य मुकाबला जे मेंसिक और जे फोनसेका के बीच में हुआ और ये भी क्वार्टर फाइनल मुकाबला काफी दिलचस्प रखा। सेमीफाइनल में कबोली का मुकाबला अपने ही देश के खिलाड़ी से होगा और माटेओ बेरेटिनी और माटाओ अर्नाल्डी के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल मुकाबले का विजेता कबोली के सेमीफाइनल में भिड़ेगा। यह मैच तीसरा मौका है जब इटली के दो खिलाड़ी किसी मेजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में हिस्सा लेंगे। और अब सेमीफाइनल के लाइनअप्स पे अगर हम नज़र डालते हैं, विमेन सिंगल सेमीफाइनल्स पर अगर हम नज़र डालते हैं, तो मीरा एंड रीवा का मुकाबला माटा कोत्स्युक से होगा। जो 19 वर्षीय मीरा एंड रीवा शानदार फॉर्म में हैं और उन्होंने क्वार्टर फाइनल में सोराना क्रिस्टिया को हराया था। दूसरी ओर माटा कोत्स्युक ने एलिना स्वीतोलिना को मात देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है और डायना श्नाइडर का मुकाबला जो है वो माजा ज्वालिंस्ता से होगा। डायना श्नाइडर ने वर्ल्ड नंबर एक अरायना साबालेंका को हराकर बड़ा उलटफेर किया, जबकि क्वालिफायर माजा ज्वालिंस्ता ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वहीं अब मेंस डबल्स सेमीफाइनल्स जो खेले जा चुके हैं उन पर नजर डालते हैं, तो पी हर्बर्ट और क्यू हेलिस की जोड़ी का मुकाबला हेलोवेरा और पैटन से हुआ, जिसमें जीत हेलोवेरा और पैटन को मिली 6-6 से, यानी कि दो सेट उन्होंने जीते। और इसके अलावा अगला मुकाबला शियोवान क्लेमेंट की जोड़ी का मुकाबला हाना तुचोवा और फॉगेट के जोड़ी के साथ हुआ, जिसमें हाना तुचोवा फॉगेट की जोड़ी को जीत हासिल हुई। और अब अगली खबर की ओर चलते हैं और विजेता से जानते हैं एशियन रिलेज चैंपियनशिप के लिए भारतीय दल में कौन कौन से हमारे चैंपियन खिलाड़ी शामिल होने जा रहे हैं।
1: जी हाँ, 2026 की एशियाई रिले चैंपियनशिप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी गई है। 20 और 21 जून को चीन के शांगयू में होने वाली इस प्रतियोगिता में 29 सदस्यीय मजबूत भारतीय दल हिस्सा लेने वाला है। पुरुष 100 मीटर के नेशनल रिकॉर्ड धारक गुरविंदर सिंह इस 29 सदस्यीय टीम का नेतृत्व करेंगे। पुरुष वर्ग की बात की जाए 400 मीटर में तो तीरथ पी शेट्टी, अविनाश कुमार, सेतु मिश्रा, निहाल विलियम, एस संतोष, रिनव जोसेफ, सूरज अलगार राजा, मोहित कुमार और भरत श्रीधर हैं। वहीं 100 मीटर में अगर बात की जाए तो अनिमेश कुजूर, गुरविंदर सिंह, हर्ष संतोष राउत, प्रणव गुरव, रागुल कुमार, सेंथिल कुमार, तमिला रासु। महिला वर्ग की अगर बात की जाए तो 400 मीटर में मिक्स्ड रिले में राशदीप कौर, एम आर पुवम्मा, अंसा बाबू, विजय कुमारी जी के, सलोनी नागर, नीरू पाठक, शुभावी और गौरी नंदना। वहीं 100 मीटर में मिक्स्ड रिले में शामिल हैं नित्या गंधे, तमन्ना, स्नेहा एस एस, सुदेशना शिवशंकर और अभिनया राजराजन। तो ये है खबर 2026 की एशियाई रिले चैंपियनशिप का, जो कि 20 और 21 जून को चीन के शांगयू में आयोजित होने वाला है।

और अब बात कर लेते हैं WTT कंटेंडर की, जिसमें मेन सिंगल्स, वुमेन सिंगल्स, वुमेन्स डबल्स और मिक्स डबल्स के मुकाबले हैं। और ये WTT सीरीज का 10वां कंटेंडर इवेंट है, और जिसमें भारतीय जो हमारे खिलाड़ी हैं उन्होंने एक चुनौती तो पेश करी, लेकिन मेन सिंगल्स में राउंड ऑफ 32 में पहुंचे मानव ठक्कर, और यहां उन्हें 3-2 से हार का सामना करना पड़ा टियागो अपोलिनिया से। और यहां पर अब मानव ठक्कर का सफर समाप्त हो गया है। और अगर अन्य मुकाबलों पर अगर हम नज़र डालते हैं तो वुमेन सिंगल्स राउंड ऑफ 32 में एलिजाबेथ समारा और एंड्रीना दियास के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें एंड्रिया ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम किया। वहीं दूसरी ओर मटियास का मुकाबला हिरोटो जापान

0: जापान के हिरोतो से हुआ, और ये मुकाबला जापान ने 3-1 से अपने नाम किया। और वुमेन सिंगल्स में आना होर्से का मुकाबला जापान की होनोको से हुआ, और जापान ने यहाँ भी बाजी मारी। और वुमेन सिंगल्स राउंड ऑफ 32 की ही अगर हम बात करें तो हमवतन का मुकाबला हमवतन से हुआ, यानी कि जापान का मुकाबला जापान के खिलाड़ी से ही हुआ, और इसमें एक खिलाड़ी जो जीता वो भी जापान का ही रहा, वो तो एक जाहिर सी बात है। और अन्य भी कई मुकाबले हैं, लेकिन खास बात तो यह है कि भारत के मानव ठक्कर का सफर जो था वो अब यहीं तक रहा।
1: वन ब्रेथ वन स्टेज वन वर्ल्ड, इसी थीम के साथ विश्व की पहली योगासन चैंपियनशिप 2026 आज 4 बजे से 5 बजे से अहमदाबाद के एका एरिना में आरंभ हो गई है। अलग अलग देशों से आए 500 से अधिक एथलीट्स के लिए 6 आयु श्रेणी वर्ग से, मतलब सब जूनियर से लेकर सीनियर तक के आधार पर तकनीकी मानकों और चेकिंग की प्रक्रिया पूरी की गई। इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग ओरिएंटेशन पहली बार लागू हो रहा है। कोड ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट सिस्टम के बारे में आइए ज्यादा जानकारी दे रहे हैं एशियन योगासन के अध्यक्ष श्री संजय मालपानी जी।
2: इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग सिस्टम है, जब एक एक जज मार्क देता है तो उन सब के मार्क वो अपने लैपटॉप पर जब डालते हैं तो तुरंत ही वो स्क्रीन पर दिखने भी लग जाते हैं, और कौन से जज ने कितने मार्क्स दिए हैं इसका पूरा चार्ट आपको हाथ के हाथ जैसे ही स्पोर्ट्स चल रहा है उसी के साथ साथ वो दिखता रहता है। और स्कोरिंग सिस्टम में बड़ी ऑब्जेक्टिविटी है कि आपको कौन सी चीज को कितने मार्क देने हैं, ये जजेस को तय करके बताया गया है। इसमें हाईएस्ट मार्क जो है वो स्थिरता को है कि फाइनल पोस्चर में जाने के बाद वो डगमगाया नहीं, उसने बैलेंस अच्छा किया, और फिर वो माउंटिंग यानी उस आसन में कैसे गया, डिसमाउंटिंग उस आसन से वापस लौट के कैसे आया, वो कैसे कितना स्ट्रेस फ्री लगा, उसकी सांस उठी या नहीं उठी, इन हर चीज का माइन्यूट डिटेलिंग के साथ में जजेस जब उसको देखते हैं और उसको मार्क करते हैं तो आउट ऑफ 10 मार्क्स उसको कितने मार्क मिले। और वो कंपटीशन भी बड़ा जबरदस्त, आजकल भारत के बच्चे तो इतना अच्छा खेलने लग गए हैं और इतने मुश्किल मुश्किल आसन ये बच्चे करने लग गए हैं। पिछले 6 साल के अभ्यास में योगासन के खेल में बहुत अच्छी प्रगति हुई है, और ये इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग सिस्टम और ऑब्जेक्टिविटी के कारण निश्चित रूप से उसमें एक ट्रांसपेरेंसी भी आई है। जो हमारे ट्रेडिशनल इवेंट्स है उसमें 5 जजेस ये डिफिकल्टी जज कहलाते हैं, और उसके अलावा टाइम जज होता है, उसके अलावा उसके और एक जज इस प्रकार से होते हैं कि वो जो अंदर आए वो बाहर जाए वो सारी चीजों को देखने के लिए। तो कुल 7 लोगों का एक पैनल वहां पे बैठता है, एक स्टेज मैनेजर होता है। जो 5 जजेस बैठकर मार्किंग करते हैं उसमें जिसने हाईएस्ट मार्क दिए हैं उसको नहीं गिना जाता, जिसने लोएस्ट मार्क दिए हैं उसको भी नहीं गिना जाता, बीच के जो 3 जजेस हैं जिन्होंने बीच के मार्क दिए हैं तो उनके मार्क्स का एवरेज काउंट होता है, और वो काउंट अल्टीमेटली उस एथलीट का फाइनल काउंट होता है।
1: श्रोताओं, आपको बताते चलें कि इस चैंपियनशिप का उद्घाटन 5 बजे होने वाला, जिसमें खेल मंत्री श्री मनसुख मांडविया भी शामिल रहेंगे, साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तो इंतजार रहेगा इस कार्यक्रम का।
0: और अब बात कर लेते हैं उलान बटार ओपन रैंकिंग सीरीज 2026 की, जो आज से शुरू हुई है, 7 जून तक चलेगी, और रोज एक मुकाबला बांटा गया है, यानी कि पहले दिन ग्रीको रोमन, दूसरे दिन वुमेन रेसलिंग, तीसरे और चौथे दिन फ्री स्टाइल। और ग्रीको रोमन के मुकाबले भारत के नाम रहे, 87 किलोग्राम भार वर्ग में सुनील ने गोल्ड मेडल जीता, और 97 किलोग्राम भार वर्ग में नितेश ने भी गोल्ड मेडल जीता। और श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे दीपिका जसवाल को और मेरी सहयोगी
1: विजेता चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक खेल पत्रिका खेल खिलाड़ी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 8:15 हुए हैं। फिल्म संगीत थोड़ी ही देर में।

0: पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरी यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।

0: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
1: ज्ञान विज्ञान
2: इतिहास के पन्नों से,
1: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
0: मौसम का मिजाज,
1: अपने शहर की खबरें,
2: बातों मुलाकातों के साथ
0: सुरीला मनोरंजन
1: और भी बहुत कुछ।
0: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
2: दिन के 11:05 से 12 बजे तक
1: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
3: नमस्कार जमशेदपुर।
4: हेलो डॉक्टर,
0: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
4: हेलो डॉक्टर,
0: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ। हेलो डॉक्टर।
5: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
6: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे तो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
5: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
6: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 MHz।

है फिल्म संगीत। नागिन फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। बोल हैं आनंद बख्शी के, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

जानी दुश्मन इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। गीतकार थे वर्मा मलिक, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाजों में लीजिए सुनिए संतोष आनंद का लिखा गीत। संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। फिल्म है प्यासा सावन।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए समीर का लिखा गीत। फिल्म है तेरे नाम, आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की हैं, संगीत निर्देशन हिमेश रेशमिया का।

0: इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब समाचार प्रसारित होंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसल

0: धार बारिश का अनुमान और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष तीन में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
2: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ का ग्रोथ इंजिन है।
0: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं।

0: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 223,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
3: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
2: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
4: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक प्रदान करता है।
2: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
6: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
1: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
7: अहमदाबाद का एक्का एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरण अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की, दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। और मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Venezuela review full spectrum of bilateral relations and explore new avenues of cooperation in energy, trade and healthcare. Home Minister Amit Shah asked the chief ministers of northeastern states to focus on AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. World Yogasan Sports Championship begins in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi hopes it will give Yogasan a global sports identity. India launches first flex fuel passenger vehicle operating on a wide range of ethanol petrol blends. Southwest monsoon hits Kerala. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Kerala, Karnataka and Tamil Nadu during the next 7 days. And in world boxing rankings, India's Jasmine Lamboria climbs to world number 1, while Priya Ghangas and Vishwanath Suresh enter into top 3.

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 सशक्तिकरण और प्रगति के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव अनंत प्रकाश पांडे और अमरीश सक्सेना।
1: आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 आदिवासी सशक्तिकरण और समावेश का एक दशक, और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं अनंत प्रकाश पांडे जी, जो कि संयुक्त सचिव हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार में। पांडे जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: जैसा कि पांडे जी, अभी भारत सरकार की तरफ से जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 मनाया जा रहा है। ये एक महीने तक चलने वाला उत्सव है और जिसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय कर रहा है। ये कार्यक्रम 10 मई से शुरू हुआ और 9 जून तक चलेगा। तो 12 सालों में जनजातीय विकास के क्षेत्र में जितनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां देश ने हासिल की हैं, जो आदिवासी और जनजाति हैं उनको गरिमा प्रदान करने के लिए, उनको सशक्तिकरण करने के लिए और जो भी समाज में उनकी भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने के लिए इस समारोह के माध्यम से जो भी काम किए गए हैं इसकी जानकारी देने की कृपा करें।
2: जनजातीय गरिमा उत्सव 2026, जैसा कि बताया हमारे

0: कि 10 मई से 9 जून तक ये लगभग 1 महीने का कार्यक्रम रहा है, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग एक एक हर हफ्ते के लिए प्रोग्राम डिजाइन किया था, जो जनजातीय समाज के लिए पिछले 12 वर्षों से सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं। तो उनके समग्र विकास की नई गाथा लिखी है पिछले 12 वर्ष में। उन्हें न केवल रोजगार का अवसर से जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे स्वास्थ्य है, एक्सेस एजुकेशन के लिए है और हेल्थ एक्सेस है, इस तरह की तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे वो घर बनाना हो, चाहे पीने के पानी की सुविधा हो, तो तमाम सुविधाओं को सरकार ने अपने पूरे जोर से पिछले 12 सालों में लगे रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि अगर हम लोग केवल बजट का तुलना करें कि बजट पिछले 12 सालों में कितना बढ़ गया है, तो अगर ट्राइबल जनजातीय विकास के लिए अगर ट्राइबल पे बजट जो पहले लगभग 2012-13 में 4,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था, आज वो 15,000 करोड़ के आसपास हो गया, जो कि लगभग 4 गुना वृद्धि हुई है, बहुत बड़ी वृद्धि है बजट
1: जी
0: में। और इसी प्रकार से अगर देखेंगे आपकी, जैसा मैंने बताया कि अलग अलग जो बुनियादी सुविधाएं, जिसमें सबसे बड़ी शिक्षा के ऊपर जो सरकार की पूरी जोर रही है कि ट्राइबल बच्चों को कैसे अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिल पाए, उसके तहत एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं, लगभग 500 स्कूल आज की डेट में नए बने हैं, और जिनसे लगभग 1,40,000 स्टूडेंट्स हमारे जो शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पढ़ाई कर रहे हैं। पूरी तरह आवासीय सुविधा है और मुझे बताते हुए बहुत गर्व और खुशी हो रही है कि इसमें काफी सारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और अलग अलग जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जैसे नीट है, जैसे हमारा IIT है एम्स में जाने के लिए, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, इस तरह के कई सारे जो प्रतियोगी परीक्षाओं को भी उत्तीर्ण कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि कितनी हाई क्वालिटी के एजुकेशन इस पूरे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के माध्यम से सरकार जो है प्रतिबद्ध है अच्छी एजुकेशन पहुंचाने के लिए। इसी तरह अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने नेशनल सिकल सेल एनीमिया में इरेडिकेशन मिशन का भी 2023 में उसकी शुरुआत की है, और जिससे लगभग 60 करोड़ जो है जनजाति उनका अच्छी तरह से स्क्रीनिंग हो सका है। और अगर हम सड़क, बिजली, पानी, इस तरह की जो अलग बुनियादी जो सुविधाएं हैं, उसमें भी इस सरकार के तहत PM जनमन योजना हो, चाहे धरती आबा उत्कर्ष उत्थान योजना है, इस तरह की तमाम जो योजनाएं हैं उनके थ्रू भी बहुत सारे कन्वर्जेंस के थ्रू अलग अलग जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बुनियादी सुविधाओं पे बहुत जोर दिया गया है। और धरती आबा में आपके 17 मंत्रालय हैं और 25 इंटरवेंशन के तहत अलग अलग इंटरवेंशन किए जा रहे हैं, ताकि जनजाति समुदाय का विकास हो सके और उन्हें जो सभी महत्वपूर्ण सुविधाएं मिल सकती हैं वो सुविधाएं मिलें। और
1: जी
0: पूरे 12 साल के जो तमाम समग्र विकास के लिए कार्य किए गए हैं, उन सबको सेलिब्रेट करने के लिए और उसको कैसे हम लोग एक उत्सव के रूप में मना सकें कि जो सरकार ने और सरकार के ऐतिहासिक कदमों ने इस पूरे जनजातीय विकास की नई जो गाथा लिखी है,
1: जी
0: उसको कैसे उत्सव को मनाया जा सके, उसके लिए मंत्रालय ने जनजातीय गौरव गरिमा उत्सव 2026 एक मंथ का हम लोग चला रहे हैं, जिसमें पहले हफ्ते में हमारे सभी श्रोता जानते हैं कि टेक्नोलॉजी आज की डेट में तकनीकी जो जितना एडवांसमेंट हो रहा है वो बहुत बड़ा योगदान आजकल कर रहा है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें और जो सुविधाएं देना चाहते हैं ट्राइबल जनजातीय भाई बहनों को, उसको किस तरह से टेक्नोलॉजी के थ्रू आसानी से पहुंचाया जा सके। और उसके तहत हमारा 10 मई से 17 मई तक ये टेक्नोलॉजी इज एज अ डेवलपमेंट ड्राइवर, मतलब विकास में कैसे ड्राइव कर सकता है टेक्नोलॉजी, उस पे पूरा वीक हम लोगों ने आयोजन किए तमाम प्रोग्राम।
1: पांडे जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, तो जितनी आपने योजनाएं बताई और निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने बनाई हैं, लेकिन एक मोटे तौर पे हम देखते हैं कि ज्यादातर जो जनजातीय इलाके हैं वहां पर सुविधाओं को पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं, उस तरह का ढांचा होता नहीं। तो ऐसे में प्रशासन क्या ऐसे अतिरिक्त कदम उठाता है जो सुविधाएं हैं उनको जनजातीय लोगों तक जहां वो है वहीं तक पहुंचाया जा सके?
0: पहला जो हम लोगों ने वीक मनाया वो तो टेक्नोलॉजी कैसे ड्राइव कर रहा है, और टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा इनेबलर होता है अगर आप अपनी बात कहीं गांव तक पहुंचाना चाहते हैं, लास्ट माइल तक। आजकल बहुत जगह है, बहुत ट्राइबल क्षेत्रों में भी इंटरनेट का भी पहुंच हो गई है, और इसलिए तमाम ऐप के माध्यम से और इस तरह की जो वेबसाइट पोर्टल के माध्यम से भी बहुत सारी हम लोग योजनाएं

0: अवेयरनेस के तौर पे पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर हम शुल योजना, जिसे आपने कहा बहुत सही बात आपने बताई कि ट्राइबल हमारे जो भाई बहन साथी हैं वो बहुत सुदूर और डिफिकल्ट एरियाज में रहते हैं और उन तक पहुंचना एक अपने आप में चुनौती रहती है, और इस चुनौती को ओवरकम करने के लिए सरकार ने, आप देखिए तो पिछले ऑलमोस्ट 10 सालों में लगातार जन भागीदारी अभियान चलाते रहे हैं, और इसी तहत एक बहुत बड़ा जन भागीदारी अभियान जो हमारा इस पूरे जनजाति गरिमा उत्सव का जो दूसरा हफ्ता था, जिसमें 18 से 25 मई इस दौरान हमने सबसे दूर सबसे पहले नाम की एक पहल शुरू की, जिसमें जन भागीदारी के थ्रू जितने सर्विसेस थी वो उनके डोर स्टेप जिनके पास तक कैसे सारी पहुंच सके, इसके लिए लगभग 76,000 जो हमारे गांव थे 600 डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे 57,000 कैंप्स किए गए और लगभग 90 लाख ट्राइबल जो हमारे भाई बहन शामिल उसमें हुए। और कुछ आंकड़े आप सभी श्रोताओं के लिए बताना चाहूंगा कि उसमें लगभग 13,000 लोगों की जन सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने अपनी समस्याएं अपनी मांग ट्राइबल समुदाय के लोगों ने रखी, और 19,000 आदि सेवा केंद्र जो कि एक तरह से एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के तौर पे हम लोग मंत्रालय उसको प्रस्तुत कर रहा है कि एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था गांव के लेवल पे रहे जहां पे कुछ बिल्डिंग को चिन्हित करके उसे आदि सेवा केंद्र के तौर पे चिन्हित किया गया, और वहां पे जो ट्राइबल से रिलेटेड और जो ग्राम विकास से रिलेटेड मंत्रालय है, अलग अलग सोशल डेवलपमेंट के मंत्रालय है, उनके डिपार्टमेंट्स के लोग वहां जाएंगे और लोगों के बीच में उनकी समस्याएं सुनेंगे, स्पेशली ट्राइबल लोगों की। तो ये आदि सेवा के माध्यम से, इसी तरह अगर आप देखोगे इन सारे कैंप्स में बहुत सारे जो स्कीम्स का सैचुरेशन का भी माध्यम किया गया, तो अगर आप आधार कार्ड एनरोलमेंट की बात करेंगे तो लगभग 3.25 लाख लोगों को आधार कार्ड में एनरोल किया गया केवल इस एक हफ्ते के दौरान, की मैं प्रगति बता रहा हूँ। आयुष्मान भारत कार्ड लगभग 2.25 लाख लोगों को दिया गया, और इसी तरह हेल्थ स्क्रीनिंग जो है टीबी और सिकल सेल के हेल्थ स्क्रीनिंग लगभग 1.35 लाख लोगों की गई। तो इस तरह के अभियान, जो आपका प्रश्न था डिफिकल्ट एरिया में कैसे मंत्रालय एक्सेस कर पाता है, तो मंत्रालय स्टेट गवर्नमेंट्स के जो राज्य सरकारों के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बीडीओ लेवल पे जो गांव के लेवल के स्तर पे अधिकारी और कर्मचारी हैं, उन सबके साथ कंधे से कंधा मिला के इस तरह के अभियान लगातार समय समय पे चला के वो हमारे पास ट्राइबल ना आए, ट्राइबल को ज्यादा दूर ना जाना पड़े, सरकार उनके द्वारा एक तरह से जाती है और वहां पे जाके योजनाओं के बारे में बताती है, और कुछ योजनाओं को जो लाभ मिल सकता है उसको कैंप के माध्यम से वहाँ भी लगातार देने का।
1: जी, यहाँ पे एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा पांडे जी, सरकार की तरफ से जैसा आपने बताया बहुत प्रयास कर रहे हैं, जागरूकता फैलाना सबसे एक महत्वपूर्ण काम है, इन प्रयासों की सफलता तभी है जब जिसके लिए काम किया जा रहा है उनकी भी भागीदारी हो, जिसको हम सामुदायिक भागीदारी की बात कहें, तो सामुदायिक भागीदारी को और बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से क्या किया गया है?
0: सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट, जैसे हम लोगों ने पहले बताया कि अगर हम पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष एक बहुत बड़ा अभियान आदि कर्मयोगी अभियान के रूप में उसको चलाया गया था, और माननीय प्रधानमंत्री का जो विकसित भारत का सपना है उस संकल्प के लिए बिना समुदाय के शामिल हुए इस पूरे संकल्प को पूर्ण कर पाना आसान नहीं, तो उसी के तहत आदि कर्मयोगी अभियान में हम लोगों ने लगभग 20 लाख ट्राइबल लोगों तक पहुंच बनाई, जिसमें अलग अलग विभाग अपने जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक ट्रेनिंग कम अवेयरनेस और सेंसिटिविटी की गई ताकि मास्टर ट्रेनर्स बने, और मास्टर ट्रेनर्स के साथ फिर मिलके ग्राम स्तर पर जो विलेज डेवलपमेंट एक्शन प्लान बनाया गया, विलेज विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया, गाँव वालों के साथ बैठ के ट्राइबल गाँव के लोग हैं उनके साथ मिल के कैसे कोई प्लानिंग की जा सकती है, उनसे चर्चा करके कैसे प्लानिंग की जा सकती है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का, किसी भी समुदाय का भागीदारी सुनिश्चित करने का सबसे बेहतरीन जो तरीका वो हो सकता है कि उसके डिसीजन मेकिंग में, उसके विकास के जो उसमें वो कैसे प्लान हो उसके गांव का विकास, उसमें उसकी भागीदारी सुनिश्चित किया। तो इसके लिए लगभग 56,000 गाँव तक हम लोग पिछले 6 महीने में पहुंचे, और उस 56,000 गाँव में गांव वालों के साथ मिलके जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, कुछ हम लोगों ने आदि सेवा केंद्र भी जो मैंने बताया था जैसे उसमें आइडेंटिफाई हुए थे, आदि सहयोगी और आदि साथी भी चिन्हित किए गए थे, कुछ वॉलंटियर्स और कुछ जो ग्राम स्तर पे राज्य सरकारों के अधीन जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके साथ मिलके और गांव वालों के साथ मिलके प्लानिंग भी की गई, कुछ बढ़िया डॉक्यूमेंट्स भी बने हैं उस पर भी काम हो रहा है। तो इस तरह से लगातार प्रयास ये रहता है कि जब तक गांव के जो असली जो वहां रहते हैं

0: जब तक उनकी बात सुन के समुदाय क्या चाहता है वो चीज बिना जाने अगर हम प्लानिंग करते रहे यहाँ दिल्ली से या किसी स्टेट हेडक्वार्टर से तो वो कामयाब नहीं होता है। लेकिन मंत्रालय ने पूरा इस बार सीरियसली इस मामले में प्रयास किया है कि हम ग्राम स्तर पे कैसे लोगों को जोड़।
1: जी, यहाँ पर मैं और एक बात आपसे पूछना चाहूंगा पांडे जी कि जब हम उद्यमशीलता की बात करते हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक उद्यमशीलता को विकसित करना भी जरूरी है, तो इस क्षेत्र में खासतौर पे क्या विशेष प्रयास किए गए हैं?
0: जनजाति की अवस्था अगर देखी जाए तो सरकार का जो पहला फोकस रहा वो ये रहा कि कैसे इनको बेसिक सुविधाओं से अच्छी तरह से लैस किया जाए। अच्छी तरह से लैस करने का मतलब कि बेसिक सुविधाएं कैसे पहुंचाई जा सके, जैसे सड़क है, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। तो मैंने जैसे पहले बताया कि इन सारी क्षेत्रों में धरती आबा अभियान हो, चाहे पीएम जनमन हो, चाहे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, स्कॉलरशिप है जो लगभग हम लोग 20 लाख पोस्ट मैट्रिक और 10 लाख प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देते हैं शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट को ताकि वो स्कूल ड्रॉप आउट ना हो सके उनको पूरी तरह से। तो इस तरह की जो बेसिक सुविधाएं हमने मतलब सरकार ने अपनी तमाम योजनाओं तक पहुंचाई है, पहुंचा रही। अब जो बहुत महत्वपूर्ण चरण है वो ये है कि अब इनको कैसे ग्रेजुएट मतलब इनको कैसे दूसरे लेवल इनकम कैसे जनरेट की जा सके ताकि अपने पैरों पे खड़े हो सकें और अब पूरे देश के जो विकसित भारत 2047 में अपना योगदान दे सकें। तो उसके लिए जो दो बहुत महत्वपूर्ण मतलब एजेंडा है सरकार के उस पे, एक तो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स कैसे डेवलप की जाए, तो उसके लिए हम लोग इंस्टीट्यूट स्किल के साथ जॉइंटली अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की ट्रेनिंग कई जगह जितने हमारे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल वहां पे कर रहे हैं। कुछ हम लोगों ने CSR के माध्यम से, क्योंकि सरकार की भी ये सोच रहती है कि प्राइवेट पार्टनरशिप भी की जाए, पब्लिक सेक्टर को भी लाया जाए ताकि समाज के हर वर्ग को जोड़ा जा सके, तो CSR के माध्यम से भी हम लोग बूट कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की ट्रेनिंग दी जा सके।
1: जी पांडे जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जनजातीय गरिमा उत्सव के बारे में और आदिवासियों के सशक्तिकरण और समावेशन के लिए सरकार जिस तरह से प्रयास कर रही है और एक पूरे महीने तक जिस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। आपका इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 सशक्तिकरण और प्रगति के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे जनजातीय कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव अनंत प्रकाश पांडे और अमरीश सक्सेना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। Countrywide.

0: ये आकाशवाणी है। आज के राष्ट्रीय क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं मैथिली लोक संगीत, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा। सौम्या मिश्रा बिहार के मधुबनी जिले की निवासी हैं। वे एक प्रतिभाशाली लोक गायिका हैं, जिन्हें मैथिली, हिंदी और भोजपुरी में अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों के लिए विशेष पहचान प्राप्त है। आपके संगीत में मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की गहरी छाप दिखाई देती है, साथ ही उसमें आधुनिक श्रोताओं को आकर्षित करने वाली नवीनता भी विद्यमान है। सौम्या मिश्रा देश भर के अनेक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक समारोहों और मंचीय कार्यक्रमों में अपनी मधुर एवं भावपूर्ण गायकी से श्रोताओं का मन मोहती रहती हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा की स्वरबद्ध प्रस्तुति में मनमोहक मैथिली लोकगीत। आज के कार्यक्रम में संगत करता है तबले पर हरिभूषण झा, ऑक्टोपैड पर ललित, ढोलक पर अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर शशिभूषण झा। सौम्या मिश्रा अपने कार्यक्रम का आरंभ कर रही हैं महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे से।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक। वी प्रेजेंट मैथिली फोक सॉन्ग बाय सौम्या मिश्रा एंड ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। सौम्या मिश्रा हेल्स फ्रॉम मधुबनी बिहार। शी इज अ गिफ्टेड फोक वोकलिस्ट acclaimed for her soulful renditions in Maithili, Hindi and Bhojpuri. Her music reflects a deep connection to the cultural traditions of Mithila, while carrying a freshness that appeals to contemporary audiences. Sowmya Mishra has performed at numerous prestigious cultural festivals and stage programs across the country, enchanting listeners with her melodious voice and heartfelt expression. In today's program, the accompanists are Haribhushan Jha on tabla, Lalit Kumar on octopad, Aman Krishan on dholak, and Shashi Bhushan Jha on keyboard. She begins her rendition with a composition titled Chanan Bhel.

0: अभी आप सुन रहे थे सौम्या मिश्रा से महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे। आइए अब सुनते हैं एक लगनी गीत जिसके बोल हैं एकता हम बारी कुमारी।
1: We just heard a composition titled Chanan Bhel. Continuing this program, she now presents a composition titled Ekta Hum Bari Kumari.

0: आप सुन रहे हैं सौम्या मिश्रा द्वारा प्रस्तुत मैथिली लोकगीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक चैती, जिसके बोल है कुहके बारी कोयलिया हो रामा।
1: That was a मैथिली

0: इसी के साथ आज के कार्यक्रम में मैथिली लोकगीत की ये प्रस्तुति अब यहीं संपन्न होती है। इस कार्यक्रम में तबले पर संगत की हरिभूषण झा ने, ऑक्टोपैड पर थे ललित कुमार, ढोलक पर थे अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर साथ दिया था शशि भूषण झा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर ओडिशा की प्रस्तुति।
1: विद दैट शी कंक्लूड्स हर रेंडिशन ऑफ मैथिली फोक कॉम्पोजिशंस। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड इन द स्टूडियो ऑफ आकाशवाणी दिल्ली। कॉन्टिन्यूइंग द ब्रॉडकास्ट फ्रॉम आकाशवाणी दिल्ली, नाउ वी विल लिसन टू द प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी जयपुर ओडिशा।

क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं। मैं अमीना हुसैन, नमस्कार। आज हम आपको सुनवा रहे हैं ओडिशा प्रदेश के कुछ मधुर और मन मोह लेने वाले आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा। इन गानों को सुरों में सजाकर आप तक पहुंचाया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा के सुप्रसिद्ध टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर श्री विजय कुमार सामंतराय। श्री विजय कुमार सामंतराय माता श्रीमती स्नेहलता सामंतराय और पिता श्री चंद्रशेखर सामंतराय के सुपुत्र हैं। आपने गुरु श्री हेमंत कुमार त्रिपाठी के तत्वावधान में बचपन से ही बेहला यानी कि वायोलिन की शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था। सन 1994 में आपने आकाशवाणी जयपुर केंद्र में स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पर योगदान दिया। उसके बाद से आपने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक सीढ़ियों को पार करते हुए सन 2023 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, आकाशवाणी और दूरदर्शन की तरफ से टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर का मान्यता हासिल किया। आपने सन 2015 में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में बेला वादक के तौर पर संगत भी किया है। आपने आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रम में संगीत देकर 20 से भी अधिक नेशनल और इंटरनेशनल एनुअल अवार्ड भी प्राप्त किया है। तो लीजिए, आज हम आपको सुनवा रहे हैं विजय कुमार सामंतराय के बनाए हुए सुरों से सजे कुछ आधुनिक ओडिया गीत। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे हैं तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण शतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह, ऑर्गन पर के संतोष कुमार राव, सैक्सोफोन पर

हैं राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपैड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर हैं उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय। स्पेशियल इफेक्ट दिया है गुप्तेश्वर पाणिग्राही। तो प्रस्तुत है पहला गाना जिसका बोल है, मन हृदयर जेते सबु कथा तम आगे प्रिय कही देली। मतलब है, अपने दिल की हर बात लो आज कह दिया हमने आपके सामने। ये बोल लिखा है गीतकार रंजन कुमार बेहरा और मधुर आवाज है प्रीति पंडा की।

चलिए अभी सुनते हैं जिंदगी की कुछ भूल भुलैया अनजान राहों की बात। ये बोल लिखा है गीतकार बसंत कुमार दास, आवाज है सनातन पुरोहित दास की। पांथ शाड़ार रातिटीए पाई घड़ीए पड़ुछी उणा, हेले मधुशाला अजणा कोणरे सरुनाही बिका किणा। जीवन हेउ केते बाट बणा, हेउ केते बाट बणा।

आगे सुनते हैं गीतकार किशोर चंद्र नंद के लिखे हुए गीत आवेगरे के ही कही थीबा कथा मनो तुली ने किया अंके। इस गाने को आवाज दिया है प्रीति पंडा। किसी ने जो दिल से कह दिया कुछ बातें, आज ये मन उन्हें ही क्यों ढूंढे।

कार्यक्रम के अगले गाने को अपने मन मोह लेने वाले आवाज से प्रस्तुत कर रहे हैं सनातन पुरोहित दास। गीतकार हैं गौर पटनायक। बोल है नाटकर मिछ अभिनय छड़ा आउ किछि जाने नाही, मतलब है जीवन के रंगमंच में मैं हूँ एक अभिनेता, झूठा अभिनय के सिवाय और कुछ भी तो नहीं आता।

अंत में प्रस्तुत है एक युगल गीत, गीतकार रंजन कुमार बेहरा, आवाज है सनातन पुरोहित दास और प्रीति पंडा की, बोल है प्रथम देखारे तुम्हें मनकल चोरी अल्प कथारे आहा लागिगला टोरी, पहले ही मुलाकात में मन चुरा लिया, थोड़े ही बातों में है दिल लगा लिया।

अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ ओडिया आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया था आकाशवाणी जयपुर केंद्र उड़ीसा में और प्रसारण किया गया आकाशवाणी दिल्ली से। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे थे तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण सतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह और गान पर के संतोष कुमार राव, सेक्सोफोन पर थे राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपेड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय, स्पेशियल इफेक्ट दिया था गुप्तेश्वर पाणिग्राही। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग में सहायता किया था रंजन कुमार बेहरा, यांत्रिक सहायता किए थे शरद कुमार पाढ़ी और एन योगेंद्र। इसी के साथ क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विदा चाहती हूँ मैं अमीना हुसैन, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: The discussions also
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: Can enter the Venezuelan market successfully.
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
3: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मिजोरम के चम्फाई जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई म्यांमा से अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी की तस्करी और 970 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुद्दीचेरी और कराईकल में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Kiran Jha. Prime Minister Narendra Modi today held talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on the expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the global south. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talks, Secretary East Rudrinth Tandon said Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation. Union Home Minister Amit Shah today said that Narendra Modi government ended the era of violence in the northeast and transformed the region from the hotspot of disputes to that of opportunities. After attending the 73rd plenary session of the Northeastern Council, NEC, Mr. Shah, in a social media post, said, "Today, NEC is serving as an institution for strategic planning for the development of region while fulfilling people's aspirations and promoting culture." In the NEC meeting, the Home Minister instructed CMs to shift the focus from law and order to shielding the rights of citizens, as insurgency is no longer an issue. He also directed states to build AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. Mr. Shah said that he also instructed to market Northeast potential in agri-wood, foreign trade and health tourism. Prime Minister Narendra Modi today said yoga is India's timeless gift to humanity. Virtually joining the inaugural edition of the World Yogasan Sports Championship being held at the EK Arena in Ahmedabad, the Prime Minister said yoga unites mind, body and spirit and inspires a healthier and more harmonious world. He expressed confidence that the maiden World Yoga Championship will give Yogasan a global sports identity and open up a wide range of opportunities for the youth. Mr. Modi highlighted that every major sport brings among and along its own comprehensive ecosystem. He stated that Yogasan sports expand globally. It will create significant new possibilities and career paths for athletes. The Ministry of Women and Child Development has invited women students, scholars, social activists and teachers for its internship program during August-September term. The program is open to women students, scholars, social activists and teachers who are enrolled in or associated with any university, academic or non-academic institution. The Ministry of Women and Child Development informed that women candidates in the age group of 21 to 40 years from non-tier 1 cities and rural areas of India are eligible to apply. It added that applicants are to be submitted online through the internship program portal wcd.intern.nic.in. The Bharatiya Janata Party announced that the party Manipur President Adhikari Mayum Sharda Devi will be party candidate for the upcoming Rajya Sabha election of Manipur. The party announced today that the party's prominent woman leader of Manipur will contest the lone Rajya Sabha seat of Manipur, which voting will be held on 18th June. It may be mentioned that the term of the current Rajya Sabha MP of Manipur, Leshimba Sanaja Uba, who represents the Bharatiya Janata Party, ends on 21st of June. India has retained its strong presence in the latest world boxing rankings. Jasmine Lamboria climbed to world number one in the women's 57 kg category, while Asian Championships Priya Gangas in 60 kg and Vishwanath Suresh in 50 kg. And that's the end of the news. ये
5: 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। इसी फ्रिक्वेंसी पर कल प्रातः 5:55 पर हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। शुभ रात्रि। जय हिंद।